नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही साथ यूं हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है, सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हो या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हो, ये भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो गए, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा डंगा, पानी ने बचा डंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे, आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमरो हमरो हमरो घने बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
1: तो हमरो बोनो अड़ी सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है। पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है। फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंगरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे, न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो, स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे,
1: जैवरे सब सोरा भरेगा, तारे देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वाग रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवावरा अमर हित्ता किसान भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। होवी भाई बहनों आप सब हमली रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु घणी मान स्वागत कर रहे हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे भाई बहनों लेने हाजिर थे गए हो कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने एक नया विषय में हाते। भाई बहनों आज कार्यक्रम में हमारी अब तक की बातचीत में विषय है

0: पशुपालन गांव आवा वाली पीढ़ी ने भविष्य तक की जरूरत को है। आपने सब जाना सो कि पानी जे है इन्हें वगर आप जो जीवन है ये संभव नती। खेतर की हरियाली पशुओं स्वास्थ्य घर की जो जरूरत है ई ने गांव की समृद्धि इतनी चीजें हैं ये पानी माते निर्भर करे है। पर आज ना टाइम में आप देखी रहो कि गाँव में गर्मी जो है ई वधवाने कारण कुआ हुकी जाए है, हेडपंप में पानी नहीं आत, खेतर में सिंचाई की जो समस्या है ई वधी रही है। ये बीजी आड़ी आप देखो हो तो बरसात नु जो पानी है ई हेतु वही ने नारा ने नदी में समस्या है, जेने कारण पानी की जो समस्या है ई हर साल वधती जा रही है। आज आप कार्यक्रम में इस बात करूंगा कि हरते पानी नी हर बूंद बचाव अपने भविष्य ने बचावा बराबर है।
1: હવે અંજલિ બોન, તો આના વિશે માતે આપણે ભાઈ બોનો કતી ઘણા અક્કાની વાતે રિંગા અબર હામળા ગીત ને મોરે કર આપણી વાતે
0: હવે।
1: તો ભાઈ બોનો આપ સબ હામળતા રહેજો આપણું રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માતે।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत में राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काड़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावो, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आराज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, हमारा विशेष बाल कार्यक्रम जहां हम बच्चों के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों को बड़ी सीख में बदलते हैं। आज का विषय है साथियों, गर्मियों की छुट्टियां और नए नए कौशल सीखना। गर्मियों की छुट्टियां आते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। कोई कहता है अब बस खेलेंगे, कोई कहता है अब बस मोबाइल चलाएंगे और कोई सोचता है साथियों बस आराम करेंगे। लेकिन क्या ये छुट्टियां सिर्फ समय बिताने के लिए होती हैं, या यह समय हमें खुद को बेहतर बनाने का एक सुनहरा मौका भी देता है? सोचिए साथियों, अगर यही छुट्टियां हम कुछ नया सीखने में लगाएं, जैसे कि चित्रकला, सिलाई, कहानी लिखना, खेल कूद करना या घर के छोटे छोटे काम, तो क्या हमारी छुट्टियां और भी खास नहीं बन जाएंगी? जी हाँ श्रोता साथियों, आज की कहानी है दो बच्चियों की, जिनका नाम है आराध्या और नेहा। एक है साथियों जो छुट्टियों को सिर्फ आराम समझती है, और दूसरी है जो इस समय को अपने सपनों की दिशा में इस्तेमाल करना चाहती है। इन दोनों की बातचीत हमें यह समझाएगी कि कैसे बच्चे छुट्टियों में प्रेरित रह सकते हैं। आगे भी जानेंगे श्रोता साथियों इस विषय पर। अभी मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही दिया है कि आज हमारी कहानी है गर्मी की छुट्टियां और नए नए कौशल सीखना। तो आइए साथियों, सुनते हैं इस रेडियो नाटक को। आप सभी बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।
1: अरे आराध्या, आखिर छुट्टियां आ ही गई। अब मैं सुबह देर तक सोऊंगी, दिन भर मोबाइल चलाऊंगी और कोई काम नहीं करने वाली। अब तो बस मजे ही मजे हैं।
2: हाँ नेहा, और मजे करना तो जरूरी भी है, लेकिन अगर हम पूरा समय सिर्फ यूं ही निकाल देंगे तो छुट्टियां तो खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद हमें लगेगा कि हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है।
1: अरे यार, साल भर तो पढ़ाई करते रहते हैं, अब छुट्टियों में भी सीखना है क्यों?
2: नेहा, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता है। छुट्टियां जो होती है वो हमें वो सिखाती है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है।
1: तो तुम क्या करोगे छुट्टियों में? क्या फिर से पढ़ाई ही करोगी क्या?
2: नहीं, पढ़ाई तो नहीं, लेकिन मैं कुछ नया सीखूंगी, जैसे कि ड्राइंग, कहानी लिखना, और मैंने तो सोचा है कि मैं तो मम्मी के साथ खाना बनाना भी सीखूंगी, थोड़ा खेलकूद भी करूंगी। इससे क्या होगा, मेरा समय भी अच्छे से जाएगा और मैं कुछ नया भी सीख पाऊंगी।
1: इतना सब करने से थकान नहीं होगी क्या तुम्हें?
2: नहीं, क्योंकि इसमें तो मजा भी है और सीख भी, और मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
1: मुझे तो मोबाइल में ही मजा आता है, गेम खेलो, वीडियो देखो, समय का पता ही नहीं चलता।
2: समय का पता नहीं चलता, यही तो समस्या है नेहा। जब हम मोबाइल में खो जाते हैं तो असली जिंदगी के अनुभव को हम खो देते हैं।
1: लेकिन मैं क्या करूं, आदत ही पड़ गई है मेरी तो।
2: आदत बदल सकती है, बस शुरुआत करनी पड़ती है। चल आज हम एक नया काम शुरू करते हैं।

0: तुम मेरे साथ ड्राइंग करना, फिर हम बाहर खेलेंगे और शाम को कुछ नया सीखेंगे। क्या बोलती हो?
1: मुझे ड्राइंग वाइंग नहीं आती।
0: अरे नेहा, कोई भी चीज शुरू में नहीं आती है, सीखने से ही आती है।
1: अच्छा, ऐसा है क्या? चलो करती हूँ मैं ट्राई। आराध्या, आज तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने ड्राइंग भी की और तुम्हारे साथ खेल भी खेला और मोबाइल कम चलाया है मैंने।
0: देखा, मैंने कहा था ना, जब हम कुछ नया करते हैं ना तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमें खुशी भी मिलती है। क्या तुम्हें खुशी मिली?
1: अब मुझे लग रहा है कि मैं भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ। अब मैं छुट्टियों को सिर्फ आराम का समय नहीं मानूंगी, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगी और अपने समय का सही उपयोग भी करूंगी।
0: बिल्कुल, और यही तो हमारी छुट्टियों का सदुपयोग हुआ। जब हम खुश भी रहेंगे और कुछ सीखेंगे भी, और यही हमारी छुट्टियों की असली जीत है।
1: अरे आराध्या, मैंने आज मम्मी की मदद से खाना बनाना सीखा। पहले मुझे लगता था कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अब समझ में आया कि इसमें भी बहुत मजा है और कितनी सारी चीजें मुझे सीखने को भी मिली है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है नेहा, क्योंकि जब हम घर के काम सीखते हैं ना, तो हम जिम्मेदारी भी सीखते हैं, और यही छोटी छोटी बातें हमें जीवन के लिए तैयार करती है।
1: अब मुझे पहले से ज्यादा मजा आने लगा है और खुद में विश्वास भी आया है कि मैं बहुत कुछ नया सीख सकती हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब लगता है कि कोशिश करूंगी तो बहुत कुछ अच्छा कर जाऊंगी।
0: बिल्कुल, यही तो असली फायदा है छुट्टियों का। जब हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं।
1: हाँ आराध्या, अब मैं अपनी छोटी बहन को भी सिखाऊंगी कि मोबाइल मत चलाया कर, कुछ नया सीख। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा, क्योंकि जब हम खुद सीखते हैं तभी हम दूसरों को सिखा पाते हैं, और वहाँ से ही असली बदलाव हमारे अंदर आता है।
1: हाँ आराध्या, अब मुझे समझ भी आ गया है कि छुट्टियाँ सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका होती है। अगर हम इस समय का सही उपयोग करेंगे तो हम अपने सपनों के और करीब पहुँच सकते हैं।
0: हाँ, और यही तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि जब हम अपने समय की कद्र करते हैं ना, तो हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं।
1: अब मेरी भी छुट्टियाँ सिर्फ मस्ती नहीं, सीख और आत्मविश्वास से भरी हुई होगी।
0: हाँ, और यही असली सफलता है।
1: छुट्टियाँ आई छुट्टियाँ आई, खुशियाँ लाई, सीखो कुछ नया, बढ़ो आगे भाई, खेलो कूदो, हुनर दिखाओ और अपना सपना सच बनाओ।
2: साथियों, आपने सुना एक छोटी से सोचने कैसे एक बच्चे की पूरी छुट्टियां बदल दी। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं होती, बल्कि यह समय होता है खुद को पहचानने का, नई चीजें सीखने का और अपने सपनों की दिशा को तय करने का। जब बच्चे इस समय का सही उपयोग करते हैं तो वे सिर्फ खुश नहीं रहते, वे आगे भी बढ़ते हैं। इसलिए साथियों, अपने बच्चों से कहिए, मोबाइल कम, सीखना ज्यादा, आराम के साथ प्रयास भी करने हैं और हर दिन कुछ नया सीखने का उत्साह रखना है। तो साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे इस विषय पर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी।

तो साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। अंत में साथियों, आपसे यही कहना चाहूंगी, जो बच्चा छुट्टियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में जो भी हमारी बातें रही आपसे और गीत संगीत रहे, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम से जाने की। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथी। दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मारू नाम गिल्ली है, ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे कि आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मुँ हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है, तो मुँ दूरी ने बा कने गई ने कीधो कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधू कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नू दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नू दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है, फोन हमारा साथी भी है और सहारा भी है पर इंसान से प्यारा नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर छोटे बड़े काम में फोन हमारा साथी बन गया है। ये हमें दुनिया से जोड़ता है, जानकारी देता है, मनोरंजन करवाता है और कई बार कठिन परिस्थितियों में सहारा भी बनता है। लेकिन श्रोताओं, इस सुविधा और उपयोगिता के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या फोन इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? क्या हम अपने रिश्तों और भावनाओं को पीछे छोड़कर इस छोटे से यंत्र के गुलाम बनते जा रहे हैं?
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही सब बातें करने वाले हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप कहीं जाइएगा नहीं और बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि बात कर रहे हैं साथियों, फोन हमारा साथी और सहारा भी है, लेकिन इंसान से प्यारा नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने बताया था जागृति जी हमारे युवा साथियों को गीत से पहले, कि आज का समय ऐसा है जहां हमारी सुबह फोन से शुरू होती है और रात भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस चीज को हमने अपना सहारा बना लिया है, कहीं वो हमारी असली दुनिया से हमें दूर तो नहीं कर रहा? आज हम इसी सच्चाई को समझने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आपको ये भी महसूस करवाएंगे कि किस प्रकार से हम फोन के आदि हो चुके हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि फोन जरूरत भी है और आदत भी। आज फोन, जागृति जी, सिर्फ एक साधन नहीं रह गया, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।
1: जी हाँ,
0: अलार्म भी फोन में, पढ़ाई भी फोन में, दोस्ती भी फोन में और मनोरंजन भी फोन में ही होती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सवाल ये है कि क्या हम फोन चला रहे हैं या फोन हमें चला रहा है? हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे हमारी जरूरत से ज्यादा आदत बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल कशिश, फोन निसंदेह हमारा एक अच्छा साथी है। ये हमें दूर बैठे अपनों से जोड़ता है। वीडियो कॉल के माध्यम से है, हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने परिवार और दोस्तों से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें नई नई जानकारियाँ देता है, पढ़ाई में मदद करता है और कई बार मुश्किल समय में मार्गदर्शन भी करता है। आपातकालीन स्थितियों में फोन जीवन रक्षक भी साबित होता है। इस तरह देखा जाए तो फोन हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन समस्या तब शुरू होती है कशिश, जब ये साथी धीरे धीरे आसक्ति बन जाता है। आजकल लोग अपने आसपास बैठे लोगों से ज्यादा अपने फोन में व्यस्त रहते हैं।
0: जी जी,
1: परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने के बजाय लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। दोस्ती अब दिल से नहीं बल्कि चैट और लाइक्स तक सीमित हो गई है।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे हम असली रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं और आभासी दुनिया में खोते जा रहे हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि हम हजारों लोगों से जुड़े हैं आज सोशल मीडिया पर, लेकिन जब दिल भारी होता है तो बात करने के लिए कोई नहीं मिलता।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि दोस्तों, ऑनलाइन रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन साथ में आने वाले रिश्ते कोई नहीं। एक सच्चा दोस्त, एक परिवार का सदस्य, उनकी जगह श्रोता साथियों कोई स्क्रीन कभी नहीं ले सकती। देखते हैं कि जब हम लगातार फोन का यूज करते हैं तो इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि लगातार फोन का इस्तेमाल हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है, ये हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि ध्यान की कमी हो रही है, नींद की समस्याएं युवा साथियों में बढ़ रही है, साथ ही हमारे जो युवा साथी हैं जागृति जी, वो अकेलेपन और चिड़चिड़ापन का भी शिकार हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया की तुलना श्रोता साथियों हमें अंदर से कमजोर बना रही है। हम दूसरों की हाईलाइट लाइव देखकर अपने रियल लाइफ से दुखी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, मानव जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। माता पिता का स्नेह हो गया, दोस्तों की हंसी मजाक हो गई, भाई बहन का प्यार हो गया,
0: जी जी,
1: ये सब हमारी भावनात्मक जरूरतें हैं जिन्हें कोई भी तकनीक पूरी नहीं कर सकती।
0: बिल्कुल,
1: फोन केवल एक माध्यम है, ये भावनाओं का स्थान नहीं ले सकता। एक गले लगाने की गर्माहट, एक सच्ची मुस्कान या किसी का हाथ थाम लेना, इन अनुभवों को कोई स्क्रीन कभी नहीं देख सकती। आज के समय में कई लोग फोन के इतने आदी हो चुके हैं कशिश, कि वे अपने परिवार के साथ समय बिताने में भी रुचि नहीं लेते।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं, माता पिता भी बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय फोन में व्यस्त रहते हैं।
0: जी हाँ,
1: ये दूरी धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर रही है। श्रोताओं, फोन का अत्यधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। लगातार हम देखते हैं कशिश की स्क्रीन देखने से आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: नींद में बाधा आ जाती है, तनाव बढ़ता है, वहीं सामाजिक दूरी के कारण व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे दूसरों के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। हम देखते हैं जागृति जी कि पहले लोग एक साथ बैठकर बातें किया करते थे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज सब साथ बैठकर भी फोन में ही खोए रहते हैं। और वर्तमान में तो हम ये चीज देख ही रहे हैं दोस्तों, कि जब माँ हमें बुलाती है तो सुनाई नहीं देता।
1: जी हाँ,
0: और पापा जब कुछ पूछते हैं तो ध्यान ही नहीं जाता कि पापा कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इसके कारण रिश्तों में दूरी बढ़ रही है और हमें एहसास भी नहीं हो रहा।
1: बिल्कुल,
0: देखते हैं कि युवा साथी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जैसे कि वे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, समय की बर्बादी हो रही है और लक्ष्य से भी भटकाव देखा जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं जागृति जी कि फोन हमें सुविधा जरूर देता है, लेकिन अगर नियंत्रण न हो तो ये हमारी क्षमता को भी कम कर सकता है। कह सकते हैं दोस्तों कि समाधान ही सफलता की कुंजी है ऐसे में, क्योंकि फोन छोड़ना समाधान नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम नो फोन टाइम तय कर सकते हैं साथियों, जिसमें हम कुछ ही समय के लिए या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपना फोन साइड में रखेंगे। सोने से पहले फोन दूर रखें श्रोता साथियों, फोन को छोड़कर परिवार के साथ समय बिताएं और दोस्तों से मिलकर भी आप बात करें।
1: जी हाँ,
0: साथ ही हमारे युवा साथी ऐसा भी कर सकते हैं कि वे अपनी शौक को अपना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मोबाइल के कारण हमारे युवा साथी अपने रुचियों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कह सकते हैं कि गाना पसंद है तो आप उसमें रुचि लें, अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसलिए फोन की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी असल दुनिया को पहचाने साथियों।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फोन के बारे में बात कर रहे हैं, जान पा रहे हैं कि फोन हमारा साथी भी है और सहारा भी है, लेकिन इंसान उसे प्यारा नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें ऐसे ही हमारे युवा साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आइए दोस्तों।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातचीत का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी ही था गीत से पहले।
1: जी जी,
0: हमारी बातचीत चल रही थी आपके साथ की फोन हमारा साथी भी है, सहारा भी है, पर इंसानों से ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि फोन का उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। कशिश, हमें समझना बहुत जरूरी है कि फोन हमारा सेवक है, मालिक नहीं। हमें इसका उपयोग सीमित और संतुलित तरीके से करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: हमें ये याद रखना होगा कि असली खुशी और संतोष हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से मिलता है, न कि फोन के स्क्रीन से।
1: जी जी,
0: हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। जब हम परिवार के साथ हों तो फोन को एक तरफ रखकर उनसे बातचीत करनी होगी। दोस्तों के साथ मिलने पर फोन के बजाय एक दूसरों की बातों पर ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि तकनीक का सही उपयोग कैसे किया जाए और असली रिश्तों का क्या महत्व है।
1: जी जी,
0: फोन का सही उपयोग हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसका गलत उपयोग हमें अकेला और कमजोर बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जरूरी है श्रोताओं कि हम तकनीक के गुलाम न बने बल्कि उसे अपने जीवन का एक सहायक उपकरण भी बनाए रखें।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम दोस्तों से बात कर ही रहे हैं कि फोन हमारा साथी और सहारा जरूर बन सकता है लेकिन इंसानों से प्यारा नहीं है, तो ऐसे में हमारे युवा साथी सोच रहे होंगे कि हम ये विषय जो है हमारा उसे बार बार ऐसा क्यों बता रहे हैं कि ये फोन जो है वो इंसानों से प्यारा क्यों नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि जो इंसान होता है वो आपकी आंखों में देखकर आपकी बात समझ जाता है, बिना कहे आपका दर्द महसूस कर लेता है और आपको गले लगाकर सुकून दे देता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन दोस्तों फोन ये सब नहीं कर सकता। भावनाएं, प्यार, अपनापन, ये सब हमें इंसानों में ही मिलेगा साथियों। कह सकते हैं कि फोन हमारा साथी है, हमारा सहारा भी है, लेकिन इंसान से प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए रिश्तों को समय दे साथियों, अपनों को महत्व दे और जिंदगी को स्क्रीन से बाहर भेजिए। याद रखिए कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन खूबसूरत सिर्फ इंसान ही बनाते हैं।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं बस इतना ही कहना है कि फोन हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा जरूर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी नहीं है। ये हमारा साथी है और सहारा हो सकता है, लेकिन इंसान से ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता।
1: जी जी,
0: असली रिश्तों की गर्माहट, अपनापन और सच्चा प्यार किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए हम सभी अपने फोन का उपयोग समझदारी से करें, लेकिन अपने रिश्तों को कभी भी इसके कारण कमजोर नहीं होने दें, क्योंकि कहा गया है श्रोता साथियों, तकनीक को अपनाएंगे पर इंसानियत को नहीं भूलेंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट आज भी इंसानों से ही मिलेगी।
0: जी हाँ,
1: फोन हमारा साथी सहारा हो सकता है पर ये कभी उस अपने की जगह नहीं ले सकता साथियों, जो बिना कहे हमारी भावनाओं को समझ जाए। इसलिए फोन को जरूरत तक सीमित रखें, अपनों का साथ हमेशा बनाए रखें श्रोता साथी, और अपनों के साथ समय भी बिताएं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि असली दुनिया से जुड़कर ही हम अपने असल जीवन को महसूस कर सकते हैं। याद रखिए साथियों कि स्क्रीन की रोशनी से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से जिंदगी चमकती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि फोन हमारी जिंदगी को आसान बनाने का साधन है, न कि उसे नियंत्रित करने वाला मालिक। ये हमें सहारा दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो अपनापन, वो सच्ची खुशी और वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं दे सकता।
1: बिल्कुल,
0: जो एक इंसान हमें दे सकता है। अगर हम आज नहीं संभले तो कल हमारे हाथ में फोन तो होगा लेकिन साथ में कोई नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोताओं जरूरी है कि हम समय रहते समझ जाए रिश्ते स्क्रीन पर नहीं दिलों में बसते हैं। जब हम अपने अपनों के साथ बैठकर हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को महसूस करते हैं,
1: जी हाँ,
0: तभी जीवन की असली खुशियां हमें मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोताओं फोन जरूरी है पर अपने उससे भी ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही, और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं।

0: के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से फोन को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे स्तु देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बात रहने वाली है, बैंक में नॉमिनी क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि आज के समय में बैंक केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं रह गया है, बल्कि हमारे जीवन की आर्थिक सुरक्षा का आधार बन चुका है। हर व्यक्ति अपने भविष्य, परिवार और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक में बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, बीमा और अन्य योजनाओं में निवेश करता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अक्सर लोग एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है नॉमिनी बनाना।
0: बिल्कुल,
1: बहुत से लोग बैंक खाता तो खोल लेते हैं पर नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते। बाद में यही छोटी सी लापरवाही परिवार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है।
0: जी हाँ।
1: इसीलिए श्रोताओं, बैंक में नॉमिनी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, लेकिन अभी सुनते हैं कार्यक्रम का।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और बातचीत भी रही थी हमारी कि आज हम बात करने वाले हैं बैंक में नॉमिनी क्यों जरूरी है। तो अंजलि, कहा गया है कि बैंक खाते की ये कहानी सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत जरूरी है नॉमिनी।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि आज के समय में बैंक केवल पैसा जमा करने की जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आर्थिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। लोगों की मेहनत की कमाई, बचत, फिक्स डिपॉजिट, बीमा, पेंशन और कई सारी आर्थिक योजनाएं बैंक से जुड़ी होती हैं। लेकिन अक्सर लोग बैंक खाता खोलते समय एक छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और वह है नॉमिनी बनाना। श्रोता साथियों, कई लोग इसे केवल औपचारिकता समझते हैं, जबकि वास्तव में यह परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नॉमिनी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे खाता धारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते या जमा राशि पर अधिकार मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: यह व्यक्ति परिवार का सदस्य, पति पत्नी, माता पिता, बच्चा या कोई भी भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बैंक में नॉमिनी जोड़ना भविष्य की अनिश्चितताओं से परिवार की सुरक्षा रखने का एक सरल लेकिन बहुत ही जरूरी तरीका होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे खाता धारक अपनी मृत्यु के बाद बैंक खाते या जमा राशि का अधिकार प्राप्त करने के लिए नामित करता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि किसी खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो बैंक में जमा धनराशि नॉमिनी को सौंप दी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे परिवार को आर्थिक संकट के समय सहायता मिलती है और कानूनी प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। यदि नॉमिनी नहीं हो तो परिवार को बैंक से पैसा निकालने में कई कानूनी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
1: जी हाँ,
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिश्चितताएं बढ़ गई है श्रोता। कोई नहीं जानता कि कब कौन सी परिस्थिति सामने आ जाए। ऐसे में अंजलि, यदि किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक दुनिया छोड़ दे और उसके बैंक खाते में नॉमिनी न हो तो परिवार आर्थिक परेशानी में फंस सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, बैंक की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, परिवार को पैसों के लिए कई कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए नॉमिनी परिवार की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवार वालों को तो वैसे ही पैसा मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। यदि बैंक खाते में नॉमिनी नहीं होता है तो खाता धारक की मृत्यु के बाद परिवार को कई कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हम देखते हैं कि परिवार को बैंक में कई दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, कई बार कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है, जिसमें समय और पैसा दोनों लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि घर का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति अचानक नहीं रहता है तो जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि परिवार को तुरंत पैसे की जरूरत होती है और नॉमिनी नहीं होने पर बैंक राशि निकालने में देरी होती है, जिससे परिवार संकट में पड़ सकता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, कई बार परिवार के सदस्यों में इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि पैसे पर किसका अधिकार है। नॉमिनी होने से ऐसी स्थितियां काफी हद तक कम हो जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: गांव और छोटे शहरों में कई महिलाओं और बुजुर्गों को बैंक प्रक्रिया की ज्यादा जानकारी नहीं होती है और नॉमिनी न होने पर उन्हें बार बार बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि नॉमिनी केवल बैंक खाते में नहीं बल्कि फिक्स डिपॉजिट, लॉकर, बीमा पॉलिसी, पेंशन योजनाओं में भी जरूरी है। इसे सुनिश्चित होता है कि जमा की गई संपत्ति सही व्यक्ति तक पहुंची। कई बार परिवार के सदस्यों में विवाद भी हो जाता है कि पैसा किसे मिलेगा, लेकिन नॉमिनी पहले से तय हो तो ऐसे विवाद कम हो जाते हैं और पारिवारिक संबंध भी सुरक्षित रहते हैं।
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, आपसे बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से लोग नॉमिनी के महत्व को ठीक से नहीं समझते हैं। कई बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे लोग बैंक में केवल खाता खुलवाने पर ध्यान देते हैं अंजलि, और नॉमिनी की प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बाद में उनके परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए बैंक कर्मचारी और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। स्कूलों, ग्राम सभा और सामाजिक कार्यक्रम में वित्तीय जागरूकता के तहत नॉमिनी के महत्व को समझाया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि बैंक में नॉमिनी होना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से यह जो चीज है वो हमारे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि नॉमिनी न होने पर क्या समस्याएं होती हैं और किस तरीके से इसके फायदे हैं, यही बात करें कि इससे जोड़ने की क्या प्रक्रिया है। तो श्रोता साथियों, नॉमिनी जोड़ना बहुत आसान होता है। बैंक खाता खोलते समय एक फॉर्म भरना होता है जिसमें नॉमिनी का नाम, उम्र और संबंध लिखना पड़ता है। यदि पहले नॉमिनी नहीं जोड़ा तो बाद में भी बैंक जाकर यह सुविधा ली जा सकती है। आज कई बैंक मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी नॉमिनी अपडेट करने की सुविधा दे रहे हैं। जागृति जी, हम देखते हैं कि आज भी कई लोग नॉमिनी का महत्व नहीं समझते। कुछ लोग सोचते हैं कि यह केवल बुजुर्गों के लिए जरूरी है, बल्कि सच्चाई यह है कि हर उम्र के व्यक्ति को अपने बैंक खाते में नॉमिनी जरूर जोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लोग यह काम टालते रहते हैं और बाद में परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्रोता साथियों, वित्तीय जिम्मेदारी केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उसकी सुरक्षा और सही व्यवस्था भी जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि नॉमिनी केवल कानूनी प्रक्रिया को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये परिवार के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति अपने खाते में नॉमिनी जोड़ता है तो अपने परिवार की सुरक्षा और सुविधा दोनों के बारे में सोचता है।
0: बिल्कुल,
1: ये एक दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। एक जिम्मेदार नागरिक वही है श्रोताओं, जो अपने साथ साथ अपने परिवार के भविष्य की भी चिंता करें।
0: जी,
1: कहा गया अंजलि कि जिम्मेदार वही इंसान जो परिवार का ध्यान रखता है। आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग का दौर है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन निवेश तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी जी,
1: ऐसे समय में नॉमिनी की भूमिका और भी अधिक ज्यादा जरूरी हो गई है। यदि किसी व्यक्ति की डिजिटल जानकारी परिवार को न पता हो तो बैंक खाते तक पहुंचना कठिन हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन नॉमिनी होने से बैंक कानूनी रूप से राशि प्रदान कर देता है और परिवार को आर्थिक सहारा मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं अंजलि कि लोग सोचते हैं कि परिवार वाले तो अपने आप पैसा प्राप्त कर लेंगे, फिर नॉमिनी की क्या जरूरत है।
0: जी जी,
1: लेकिन वास्तविकता ये है श्रोताओं कि बिना नॉमिनी के बैंक किसी को सीधे पैसा नहीं देता। इसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसमें समय और धन दोनों खर्च होते हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले से ही नॉमिनी बना दिया जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पैसा, संपत्ति, बचत और सुविधाएं, लेकिन यदि इन सब की सही व्यवस्था न हो तो कई बार हमारी मेहनत से बनाई गई सुरक्षा ही परिवार के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। बैंक में नॉमिनी जोड़ना उसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल बैंक की औपचारिकता नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एक समझदारी भरा कदम है। अक्सर लोग भविष्य के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसे में समझदारी इसी में ही है श्रोता साथियों, कि हम पहले से ऐसी तैयारी रखें जिससे हमारे बाद परिवार को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। नॉमिनी की सुविधा परिवार को भरोसा देती है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी ही जमा पूंजी पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह भी जरूरी है जागृति जी कि समाज में वित्तीय जागरूकता बढ़े। गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में आज भी कई लोग बैंकिंग की छोटी लेकिन जरूरी बातों से अनजान हैं। यदि लोग नॉमिनी के महत्व को समझेंगे तो कई परिवार भविष्य की परेशानियों से बच सकेंगे।
1: बिल्कुल,
0: स्कूलों, सामुदायिक कार्यक्रमों, बैंकों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जानी चाहिए श्रोता साथियों कि आर्थिक सुरक्षा केवल कमाई से नहीं बल्कि सही योजना और जिम्मेदारी से आती है।
1: बिल्कुल,
0: और व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि छोटी छोटी सावधानियां ही भविष्य की बड़ी परेशानियों को रोकती है। इसलिए बैंक खाते, FD बीमा और अन्य आर्थिक योजनाओं में सही नॉमिनी जोड़ना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम है। यही दूरदर्शिता एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक की पहचान बनती है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हमें कहना चाहेंगे कि नॉमिनी बच्चे हो सकते हैं, महिला और बुजुर्ग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि परिवार का मुखिया नहीं रहे तो नॉमिनी के माध्यम से परिवार को बहुत जल्दी आर्थिक सहायता मिल सकती है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। श्रोता साथियों, आपसे कह सकते हैं कि बैंक में नॉमिनी बनाना एक छोटी सी प्रक्रिया होते हुए भी बहुत बड़ा महत्व रखती है। ये भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती है, परिवार को कानूनी परेशानियों से बचाती है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में हमारी मदद करती है।
0: जी हाँ,
1: हर व्यक्ति को अपने बैंक खाते, FD, बीमा और अन्य योजनाओं में नॉमिनी अवश्य जोड़ना चाहिए। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है श्रोताओं, बल्कि अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए कहा गया है कि धन कमाना समझदारी है, परिवार की सुरक्षा जिम्मेदारी रही है। नॉमिनी जोड़कर यही बताना है कि अपनों का भविष्य भी हमें ही बचाना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छे तरीके से ये जान पाए कि बैंक में नॉमिनी क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से बैंक में नॉमिनी क्यों जरूरी है को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाइन तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना न कब्जू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ने आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
2: अणी माटी में जन्मी हूँ, अणी माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया, बीज बोया, मैं पसीनो बहाई वो मिश्रम करो। तो पसे बाप दादा नी जन्म माते मारो अधिकार किम नती। सूरी जन्म तकीस हकदार है, कानून ने आ बात मानी है। न पढ़ने पूटे न हक को ले सके, न रिवाज न सच ने बदली सके। बाप दादा नी जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक, इन्हें नी पहचान।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: हमरो हमरो हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीना कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रद्धा साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो हम एक नए विषय को लेकर आपसे बातचीत करते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से सेहत से जुड़ा एक बहुत ही अच्छा विषय जुड़ रहा है। साथियों, बात कर रहे हैं कि सेहत की समस्याओं के समाधान के लिए उसकी प्रक्रियाओं को पहले हमें समझना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि मनीषा, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, यह शरीर जो है वो दिन रात बिना रुके हमारे लिए काम करता रहता है। हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं और सपने भी देखते हैं, साथ ही जीवन का आनंद भी लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अंदर ही अंदर हजारों प्रक्रियाओं को लगातार संचालित कर रहा होता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन दोस्तों अक्सर हम तब तक अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि कोई बीमारी या समस्या सामने नहीं आ जाती।
0: जी हाँ,
1: देखते हैं कि सिर दर्द, थकान, कमजोरी, मोटापा, तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधित परेशानी हो या फिर नींद की कमी जैसी कई समस्याएं दोस्तों अचानक पैदा नहीं होती है।
0: जी हाँ,
1: बल्कि शरीर की प्रक्रियाओं में धीरे धीरे आने वाले असंतुलन का ये परिणाम होती है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बताया ही था कि आज हम बात करने वाले हैं सेहत की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि आज के समय में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या तेजी से बढ़ रही हैं। पहले जहां लोग केवल संक्रामक बीमारियों से परेशान होते थे, वहीं आज तनाव, मधुमेह, मोटापा, रक्तचाप, हृदय रोग, कुपोषण और मानसिक समस्या से जुड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आधुनिक जीवन शैली, गलत खान पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव इन समस्याओं के मुख्य कारण होते हैं। साथी कोशिश, हम देखते हैं कि अक्सर लोग बीमार होने के बाद इलाज के बारे में सोचते हैं, जबकि श्रोता साथियों सही तरीका यह है कि हम बीमारी के कारण, उनके लक्षण, समाधान की पूरी प्रक्रियाओं को समझें। जब व्यक्ति किसी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ को समझ लेता है कशिश, तब वह उसका स्थायी समाधान कर सकता है। केवल दवा खाना ही समाधान नहीं है साथियों, बल्कि सही दिनचर्या, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और स्वच्छता भी आवश्यक है। स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए हमें यह समझना होगा कि हर बीमारी का संबंध हमारे शरीर, मन और वातावरण से होता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम सही प्रक्रियाओं को अपनाएं तो न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि आज के समय में लोग जल्दी इलाज चाहते हैं, लेकिन बीमारी की जड़ को समझने का प्रयास नहीं करते।
0: बिल्कुल,
1: दवा लेना आसान होता है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि शरीर आखिर संकेत क्या दे रहा है।
0: जी हाँ,
1: यदि हम शरीर की कार्यप्रणाली को समझ ले मनीषा, तो कई बीमारियों से हम पहले ही बच सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश,
1: यही कारण है साथियों कि स्वास्थ्य के समाधान केवल दवाओं में नहीं बल्कि शरीर की प्रक्रियाओं के समझने में छिपे होते हैं।
0: जी जी,
1: हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर एक मशीन नहीं बल्कि एक जीवित व्यवस्था है। शरीर का हर अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है। यदि पेट खराब है तो उसका असर दिमाग पर भी पड़ सकता है।
0: जी हाँ,
1: यदि तनाव बढ़ता है तो नींद प्रभावित हो सकती है, और यदि नींद खराब होती है तो पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। इसलिए साथियों, शरीर को अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में हमें समझना चाहिए।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आजकल लोग स्वाद और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। फास्ट फूड, अधिक तेल, मसाले, जंक फूड और मीठे पदार्थों का अत्यधिक सेवन शरीर को नुकसान पहुंचाता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: इससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। श्रोता साथियों, इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें ताजा और पौष्टिक भोजन करना है।
1: बिल्कुल,
0: हरी सब्जियां और फल अधिक खाने हैं हमें, और साथ ही अधिक पानी पीना है।
1: जी,
0: तले हुए भोजन से बचे साथियों, और समय पर भोजन करें। कशिश, हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा देता है और रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि तकनीकी के बढ़ते उपयोग ने लोगों को आलसी बना दिया है। लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर कमजोर होता है साथियों। समाधान के लिए हमें कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना है, सुबह टहलने जाएं, योग और प्राणायाम करें, खेल कूद में भाग लें। साथियों, व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ,

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हम हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है कि सेहत की समस्याओं के समाधान के लिए उसकी प्रक्रियाओं को हमें पहले समझ लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर बात करें मनीषा मानसिक स्वास्थ्य की तो देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी शरीर की प्रक्रियाओं का असर पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि आज तनाव लगभग हर आयु वर्ग की समस्या बन चुका है। विद्यार्थी पढ़ाई के दबाव में है, युवा करियर की चिंता में है और बुजुर्ग जो है वो अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान है।
1: जी हाँ कशिश,
0: लेकिन दोस्तों तनाव केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करता है।
1: जी हाँ,
0: तनाव बढ़ने पर शरीर के कुछ हार्मोन्स अधिक बनने लगते हैं जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है, नींद खराब हो सकती है और प्रतिरोधक क्षमता इससे कमजोर हो सकती है। मनीषा, यदि व्यक्ति मानसिक प्रक्रियाओं को समझ जाए तो वह जान पाएगा कि हर समय चिंता करना समाधान नहीं होता बल्कि मन को शांत रखने के लिए हमें बातचीत, ध्यान, योग के साथ साथ संगीत, प्रकृति के साथ समय बिताना और सकारात्मक सोच को अपनाना भी जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भविष्य की कई समस्याओं को आमंत्रण देने जैसा है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई लोग स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें सही निर्णय लेने होते हैं साथियों।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए। श्रोता साथियों, हम जागरूकता कैसे बढ़ाएं? इसके लिए हमें स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने हैं, रेडियो और टीवी के कार्यक्रम चलाने हैं, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा दी और सोशल मीडिया पर सही जानकारी दें। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि कई बीमारियां शुरुआती चरण में पता नहीं चलती, नियमित जांच से बीमारी को समय समय पर पहचाना जा सकता है साथियों। इसीलिए साथ ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच हमें करवानी है, रक्तचाप और शुगर की जांच हमें करवानी है और बच्चे और बुजुर्ग इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेते हैं जिससे श्रोता साथियों में नुकसान होते हैं। कभी भी हमें श्रोता साथियों डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हमें दवाइयां लेनी है। श्रोता साथियों, डॉक्टर की सलाह माने, दवाइयां समय पर ले और इलाज को अधूरा न छोड़ें।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है।
1: जी हाँ,
0: हमारा शरीर हर दिन अनेक वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है साथियों। यदि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। लेकिन वही गलत खानपान, तनाव, धूम्रपान, शराब, नींद की कमी और शारीरिक निष्क्रियता के कारण श्रोता साथियों इस शक्ति को कमजोर हम कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण आज हम कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। मनीषा, बहुत से लोग केवल बीमारी होने पर स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, जबकि सच तो ये है कि स्वस्थ रहने की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, सकारात्मक दिनचर्या और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। साथियों, जब हम ये सब समझ जाते हैं कि शरीर खुद को बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है, तब हम उसकी सहायता करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं दोस्तों को कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: साथियों, धन, सफलता और सुविधाएं तभी सार्थक है जब शरीर और मन स्वस्थ हो। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाइयों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है साथियों। जरूरी ये भी है कि हम अपने शरीर की कार्यप्रणाली को समझें, उसके संकेतों को पहचानें और समय रहते सही कदम उठाएं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि मनीषा, शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे केवल खराब होने पर ही ठीक किया जाए। ये एक जीवित व्यवस्था है जिसे निरंतर देखभाल, संतुलन और अनुशासन की जरूरत होती है। ऐसे में साथियों, सही भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच, ये सभी चीजें मिलकर शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बोल, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
4: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
3: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
4: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
3: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ, सोराना न कब्जू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार, भिंडा तुरिये आलड़ी, कोरा ने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, दिले आवे जोर, सीरो दलियो राबड़ी, फूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ने आ खवानो आल, अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्त रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत का विषय है कि मानसिक थकान को पहचानना क्यों जरूरी है। हम देखते हैं कि आज का समय जो है वो तेजी से बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: बढ़ती जिम्मेदारियां, लगातार भागदौड़ का ये समय जो है उसमें हर व्यक्ति पर किसी न किसी चीज का दबाव रहता है।
0: जी हाँ,
1: कोई नौकरी की चिंता में है तो कोई पढ़ाई को लेकर परेशान है, तो कोई परिवार की जिम्मेदारी से थका हुआ है।
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। हम देखते हैं कि बाहर से देखने पर लोग सामान्य दिखाई देते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन भीतर ही भीतर कई लोग मानसिक थकान का सामना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: मानसिक थकान केवल थोड़ा परेशान होने का नाम नहीं है। यह वह स्थिति है मनीषा, जब इंसान का मन लगातार तनाव, चिंता, जिम्मेदारियों और भावनात्मक दबाव से इतना थक जाता है कि उसका असर उसके व्यवहार, सोच, रिश्तों और स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है।
0: जी बिल्कुल,
1: कई लोग इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि समय पर इसे पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
0: जी हाँ,
1: शारीरिक थकान दिखाई दे जाती है लेकिन मानसिक थकान अक्सर चुपचाप इंसान को भीतर से कमजोर कर रही है।
0: जी हाँ,
1: यही कारण है कि आज मानसिक स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। थकान बढ़ रही है जो कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके थे कि आज हम बात करने वाले हैं थकान को पहचानना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी जिम्मेदारी में व्यस्त रहता है। कोई पढ़ाई में लगा रहता है, कोई नौकरी में, कोई खेती बाड़ी में, तो कोई घर की जिम्मेदारियों में, तो कोई श्रोता साथियों सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। हम देखते हैं कि लगातार काम करना अच्छी बात है, लेकिन जब शरीर और मन थकने लगे साथियों, तो हमें उस थकान को नजरअंदाज करते रहें तब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है और हमारे लिए परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए साथियों, थकान को पहचान कर उसे समय पर उसका ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि थकान तो मेहनत करने वालों को होती है, इसमें नई बात क्या है, लेकिन हर व्यक्ति थकान सामान्य नहीं होती। कई बार शरीर श्रोता साथियों हमें संकेत देता है कि उसे आराम की जरूरत है, सही भोजन और मानसिक शांति की जरूरत है। श्रोता साथियों, यदि हम इन संकेतों को समझ ले तो हम खुद कई शारीरिक मानसिक और मानसिक समस्याओं से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जब किसी व्यक्ति का मन लगातार तनाव, चिंता और जिम्मेदारी और भावनाओं के दबाव में रहता है, तो धीरे धीरे उसकी मानसिक ऊर्जा कम होने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: इसे ही मानसिक थकान कहा जाता है श्रोता साथियों। इस स्थिति में व्यक्ति जो है वो हर समय थका हुआ महसूस करता है।
0: जी हाँ,
1: छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, काम में मन नहीं लगता और जल्दी गुस्सा और उदासी महसूस करता है। कह सकते हैं मनीषा के मानसिक थकान केवल दिमाग की नहीं बल्कि पूरे जीवन की स्थिति को प्रभावित करती है।
0: जी हाँ,
1: मानसिक थकान के बढ़ने के कई सारे कारण है, जैसे की लगातार तनाव।
0: जी हाँ,
1: हर उम्र का व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: नौकरी का दबाव, आर्थिक परेशानी, पढ़ाई की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी और भविष्य का डर। श्रोता साथियों, ये सब धीरे धीरे मानसिक थकान बढ़ाते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज लोग आराम करने के बजाय घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। सोशल मीडिया पर तुलना, नकारात्मक खबरें और दिखावे की दुनिया भी मानसिक दबाव को बढ़ाती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि थकान केवल शरीर की कमजोरी नहीं, यह हमारे मन, सोच, व्यवहार और काम करने की क्षमताओं को भी प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल,
0: एक थका हुआ व्यक्ति श्रोता साथियों जल्दी गुस्सा करता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। साथ ही श्रोता साथियों, वह धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन है वो भी कम हो जाता है और बिगड़ने लगता है। इसलिए थकान को पहचानना केवल श्रोता साथियों स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि अच्छे जीवन के लिए भी आवश्यक है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि थकान एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को कमजोर, सुस्त और ऊर्जा से रहित महसूस करता है। उसे किसी काम में मन नहीं लगता और शरीर भारी भारी महसूस होता है। कभी कभी श्रोता साथियों थकान शारीरिक होती है और कभी मानसिक, कई बार दोनों श्रोता साथियों एक साथ होने लगती हैं। जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, सही भोजन नहीं करते या लगातार तनाव में रहते हैं, तब श्रोता साथियों जब शरीर और मन थकने लगते हैं यह थकान धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अगर समय पर इसका ध्यान न दिया जाए अंजलि जी, तो हम बीमारियों से भी घिर सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि नींद पूरी न होना, लगातार काम करते रहना और खुद के लिए समय न निकालना मानसिक थकान को बढ़ाता है।
0: जी हाँ,
1: कई लोग अपनी परेशानी के बारे में बात नहीं करते, वे अपने दुख, डर और चिंता को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं।

0: श्रोता साथियों, धीरे धीरे ये दबाव मानसिक थकान का कारण बनता है।
1: जी हाँ,
0: आज लोगों के पास बातचीत के लिए समय कम होता जा रहा है। भीड़ में रहते हुए भी लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। श्रोता साथियों, यह अकेलापन मानसिक थकान को और बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि मानसिक थकान को पहचानना क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, समय रहते समस्या को संभाला जा सकता है। अगर मानसिक थकान को शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो व्यक्ति खुद को संभाल सकता है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन अगर इसे लगातार नजरअंदाज किया जाए तो गंभीर मानसिक समस्याओं का रूप ले सकता है।
1: जी हाँ,
0: मानसिक थकान का असर व्यवहार पर पड़ता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, बात बात पर गुस्सा कर सकता है और लोगों से दूरी बनाने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: इससे परिवार और रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मानसिक थकान केवल मन तक सीमित नहीं रहता। इससे सिर दर्द, नींद की समस्या, कमजोरी, भूख कम लगना, शरीर में दर्द, ऐसी समस्याएं होने लगती है। जब मन थका होता है मनीषा, तो ध्यान और एकाग्रता कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: व्यक्ति काम में गलती करने लगता है, निर्णय लेने में परेशानी महसूस करता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, इससे आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। इसलिए ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें समय रहते पहचान लेना बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब हमारा शरीर लगातार काम करने के कारण कमजोर महसूस करने लगता है साथियों, तब हमें मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, चलने फिरने में आलस आने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: और हमारी शरीर की ऊर्जा है वो भी काफी हद तक श्रोता साथियों कम हो जाती है, जिससे हमें शारीरिक थकान होने लगती है। जैसे कि श्रोता साथियों, किसान दिन भर खेत में काम करता है, मजदूर और मेहनत करता है, विद्यार्थी देर रात तक पढ़ाई करते रहते हैं, या गृहिणी पूरे दिन घर में काम करती रहती है, तब श्रोता साथियों शरीर को आराम की जरूरत होती है। यदि आराम न मिले तो यह शरीर को थका देता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं कि किस तरीके से मानसिक थकान को समय रहते पहचान लेना हमारे लिए जरूरी होता है।
1: जी हाँ,
0: ये बातें निरंतर आगे यूं ही श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में मनीषा श्रोता साथियों से हमारी बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है कि मानसिक थकान को पहचानना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, मानसिक थकान को पहचानने के लिए उसके संकेत समझना जरूरी होता है। इसके लिए हमें भावनात्मक संकेत समझने होंगे, जैसे कि हर समय उदासी महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, निराशा महसूस करना और उत्साह खत्म हो जाना।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ व्यवहारिक संकेत की बात करें तो लोगों से दूरी बनाना, बातचीत कम करना, काम टालना, अकेला रहना पसंद करना। और वहीं शारीरिक संकेत भी होते हैं इसके कुछ, जैसे कि लगातार थकान, नींद पूरी न होना, सिर दर्द, कमजोरी। श्रोता साथियों, अगर ये संकेत लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें नजरअंदाज हमें नहीं करना है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ महिलाओं में भी मानसिक तनाव होता है, यानी कि श्रोता साथियों, घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारियों के कारण महिलाएं अक्सर मानसिक थकान का सामना करती है, लेकिन कई बार उनकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया जाता।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि लगातार काम करना, परिवार की चिंता, खुद के लिए समय न निकालना, भावनाओं को दबाना। श्रोता साथियों, ये समय महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हमें इन समस्याओं को भी पहचानने की जरूरत होती है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि मानसिक थकान से मनीषा कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। बच्चे हो या युवा, सभी में ये थकान अवश्य होता है।
1: जी हाँ।
0: आज बच्चे और युवा भी मानसिक दबाव में जी रहे हैं। पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता, तुलना, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता, इन सब का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
1: जी हाँ।
0: कई बच्चे अपनी परेशानी बता नहीं पाते और धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगते हैं। बुजुर्ग जो हैं, अकेलापन, स्वास्थ्य समस्याएं और परिवार से दूरी महसूस करने के कारण उनका थकान बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें समय और भावनात्मक सहारे की सबसे ज्यादा श्रोता साथियों जरूरत होती है, लेकिन जब उन्हें ये नहीं मिल पाता है मनीषा, तो हम देखते हैं कि उनके मानसिक तनाव की स्थिति जो है वो निरंतर बढ़ने लगती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मानसिक थकान आज के समय की बहुत तेजी मतलब बड़ी समस्या बन चुकी है। जब व्यक्ति लगातार श्रोता साथियों चिंता, तनाव, डर में, डर की प्रतियोगिता या जिम्मेदारियों में घिरा रहता है अंजलि जी, तब उसका मन थक जाता है।
0: बिल्कुल।
1: मानसिक थकान में व्यक्ति परेशान रहने लगता है साथियों, किसी काम में रुचि नहीं ले पाता
0: जी जी।
1: और बार बार हम देखते हैं कि नकारात्मक विचारों को अपने मन में लाने लगता है। कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी परीक्षा के दबाव से मानसिक थकान महसूस करते हैं। नौकरी करने वाले लोग काम के दबाव से परेशान हो जाते हैं। घर की आर्थिक समस्याओं से भी मानसिक थकान बढ़ती है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि शरीर हमेशा हमें संकेत देता है, लेकिन अंजलि जी हम अक्सर उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: जी हाँ।
1: यदि समय रहते थकान को पहचान लिया जाए साथियों, तो हम खुद को बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि लगातार थकान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है, इससे व्यक्ति जल्दी बीमारियों में पड़ने लगता है। यदि श्रोता साथियों, थकान को समय पर पहचान लिया जाए और अपने शरीर को आराम दिया जाए, तो हम स्वास्थ्य से जुड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपने मानसिक थकान को समझ लेता है, वह समय रहते ही खुद को आराम देता है, अपने मन की बातें साझा करता है और तनाव से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इससे श्रोता साथियों मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि मानसिक थकान से बचने के कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाने होंगे, जैसे कि हमें पर्याप्त नींद और आराम लेना होगा, जिससे हमारे दिमाग को आराम देना जिससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है, और ये
1: देना
0: हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अपनी भावनाएं हमें साझा करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम हमारी मन की बात किसी से साझा नहीं करते हैं, तो हम अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर टूट जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना है, कुछ समय डिजिटल दुनिया से दूर रहना ही श्रोता साथियों हमारे लिए अच्छा होता है। परिवार और दोस्तों से बातचीत करें, इससे हमारा मानसिक तनाव जो है वो कम होता है। मनपसंद काम करना जरूरी है, क्योंकि खुद के लिए जब तक हम समय नहीं निकालेंगे, तब तक हम हमारे जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: योग और ध्यान को नियमित अपनी दिनचर्या में अपनाना है श्रोता साथियों, ये मानसिक शांति देने में बहुत मदद करता है। जब हम योग और ध्यान करते हैं, तो हमारा मन जो है वो अंदर से शांत होता है, और जब मानसिक शांति हमें मिल पाती है, तो हम देखते हैं कि कई समस्याओं से हम बच पाते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ जरूरत पड़े तो हमें विशेषज्ञों की सलाह लेनी भी जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना कमजोरी नहीं होती है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो दिन ब दिन स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और एक दिन हम देखेंगे कि बहुत सारी मुसीबतों का हमें सामना भी करना पड़ सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में लोगों की जीवन शैली बहुत बदल गई है।
0: बिल्कुल।
1: देर रात तक मोबाइल चलाना, कम नींद लेना, बाहर का भोजन खाना, लगातार काम करना और आराम के लिए समय न निकाल पाना, श्रोता साथियों ये सभी ही जो हमारी थकान को बढ़ा देते हैं। पहले लोग प्रकृति के करीब रहते थे अंजलि जी, और समय पर सोने और जागते थे, मेहनत करते थे, लेकिन साथ ही हम पर्याप्त आराम भी करते थे। आज की तकनीकी सुविधाएं तो बड़ी हैं श्रोता साथियों, लेकिन मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अंजलि जी हम देखते हैं कि आज विद्यार्थी भी बहुत दबाव में रहते हैं, पढ़ाई, प्रतियोगिता, परीक्षा और अच्छे अंक लाने का तनाव उन्हें मानसिक रूप से थका देता है। कई बार साथियों बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते, इसका असर उनकी याददाश्त, ध्यान और स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसीलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। साथी श्रोता साथियों हम देखते हैं कि युवा अपने करियर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, नौकरी पाने की चिंता, आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंताएं। अंजलि जी हम देखते हैं कि ऐसे में उन्हें मानसिक थकान से वे थक जाते हैं। कई बार युवा अपनी थकान को कमजोरी समझकर छुपाते रहते हैं, लेकिन असली समझदारी साथियों यही है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन की स्थिति को समझे, जरूरत पड़ने पर आराम करे और मदद लेने से बिल्कुल भी न शर्माए।
0: बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति बहुत जरूरी होती है और इस थकान को कम करने के लिए क्या उपाय हम अपना सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: ये बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे थकान को समझना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि परिवार में परिवार व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होता है। यदि परिवार समझदार हो तो व्यक्ति अपनी परेशानियों को जल्दी से बाहर निकाल देता है। साथ ही हम देखते हैं कि परिवार के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। यदि कोई सदस्य ज्यादा थका हुआ है या परेशान दिखे तो उसे प्यार से बात करनी चाहिए। साथ ही साथियों, हम देखते हैं कि प्रकृति के करीब रहने से हमें मानसिक शांति मिलती है। सुबह की ताजी हवा, पेड़ पौधों की छाया, पक्षियों की आवाज और खुला वातावरण हमारे मन को सुकून देता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि तनाव और थकान है वो भी बढ़ती जा रही है। यदि श्रोता साथियों, हम रोज थोड़ा सा समय प्रकृति के साथ बिताएं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अपने शरीर को और मन का ध्यान रखना हम कोई स्वार्थ नहीं होता, यह हमारी जिम्मेदारी है। कई लोग दूसरों के लिए इतना काम करते हैं अंजलि जी कि खुद को समय ही नहीं दे पाते। हमें यह समझना होगा कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे, इसलिए खुद की देखभाल करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि मानसिक थकान कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह इंसान के जीवन, रिश्तों और स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर सकती है। इसे नजरअंदाज करना धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देता है। आज सुरक्षता साथी इस बात की है कि हम केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की थकान को भी समझे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे शरीर को आराम चाहिए वैसे ही मन को भी शांति, अपनापन और सहारा चाहिए होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: अगर हम समय रहते मानसिक थकान को पहचान ले श्रोता साथियों, तो खुलकर बात करें, खुद को संभालने का प्रयास करें, तो जीवन को बेहतर और संतुलित बनाया जा सकता है। एक संवेदनशील समाज वही होता है श्रोता साथियों, जहाँ लोग केवल दूसरों की मुस्कान नहीं देखते बल्कि उनके मन की स्थिति को भी समझने की कोशिश करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: स्वस्थ मन ही खुशहाल परिवार और मजबूत समाज की नींव होता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि थकान जीवन का एक सामान्य हिस्सा हो सकती है, लेकिन लगातार बनी रहने वाली थकान एक चेतावनी भी हो सकती है। हमारा शरीर और मन हमें समय समय पर संकेत देता है कि हमें आराम, संतुलन और देखभाल की जरूरत है। यदि हम इन संकेतों को समझ ले तो हम कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं से बच सकते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम केवल काम को ही महत्व न दें बल्कि अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी इतनी ही अहमियत दें। मेहनत जरूरी है श्रोता साथियों, लेकिन आराम भी उतना ही जरूरी है। थकान को पहचान कर कमजोरी को दूर करना ही समझदारी की निशानी है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा, पर्याप्त नींद लेनी होगी, अच्छा भोजन करना होगा और नियमित व्यायाम करना होगा। साथ ही श्रोता साथियों, सकारात्मक सोच और परिवार का सहयोग हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे सकता है। जब हम अपने शरीर और मन की बात को सुनना सीख पाएंगे अंजलि जी, तभी हम सच में बेहतर जीवन जी पाएंगे।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को समझाना चाहेंगे कि एक छोटे से शहर में सीमा नाम की महिला रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा तो नहीं था श्रोता साथियों, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थी।
0: जी हाँ,
1: सुबह जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम करना, बुजुर्गों सास की देखभाल करना, फिर सिलाई का काम करके घर की आय में मदद करना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। सीमा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मोहल्ले वाले कहते सीमा बहुत मजबूत है, कभी थकती ही नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके मन के अंदर कितनी थकान जमा हो चुकी थी।
0: जी हाँ,
1: धीरे धीरे सीमा बदलने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ जाती थी, बच्चों की आवाज उसे परेशान करने लगी, रात को नींद नहीं आती और सुबह उठते ही उसे लगता जैसे शरीर नहीं मन भारी हो गया हो। एक दिन उसकी छोटी बेटी गुड़िया स्कूल से खुश होकर आई और बोली, मम्मी आज मैंने ड्रॉइंग में पहला इनाम जीता है। सीमा उस समय रसोई में काम कर रही थी। उसने बिना देखे ही कहा, अच्छा ठीक है, मुझे अभी परेशान मत करो। गुड़िया चुप हो गई। उसने धीरे से अपना इनाम मेज पर रखा और बाहर चली गई।
0: जी हाँ,
1: शाम को सीमा ने देखा कि गुड़िया अकेले बैठी रो रही है।
0: जी हाँ,
1: सीमा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? गुड़िया बोली, मम्मी पहले आप मेरी बात सुनती थी, अब आप हमेशा गुस्से में रहती हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या? यह सुनकर सीमा की आंखें भर आई। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी बहुत थक चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: अगले दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला शांता काकी उससे मिलने आई। उन्होंने सीमा का उदास चेहरा देखा और प्यार से पूछा, बेटी तुम आखिरी बार अपने लिए कब बैठी थी?
0: जी।
1: सीमा चुप रही, उसे याद ही नहीं था कि उसने आखिरी बार बिना चिंता के कब आराम किया था। शांता काकी ने कहा कि बेटी मशीन भी लगातार चले तो गर्म होकर बंद हो जाती है, फिर इंसान का मन कैसे बिना रुके चलता रहेगा।
0: जी हाँ।
1: उनकी बात सीमा के दिल को छू गई। उस दिन के बाद सीमा ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। वह रोज सुबह कुछ देर अपने बच्चों के साथ बैठने लगी, शाम को छत पर थोड़ी देर खुली हवा में समय बिताती, अपनी परेशानी पति से साझा करने लगी, मोबाइल पर बेवजह समय कम किया और खुद को आराम देने लगी। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा।
0: जी हाँ।
1: घर का माहौल भी बदल गया, बच्चे फिर से हंसने लगे और सीमा के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। एक दिन गुड़िया ने अपनी कॉपी में लिखा, मेरी मम्मी दुनिया के सबसे अच्छी मम्मी है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि अब वो फिर से हंसने लगी है। यह पढ़कर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन उसे समझ आया कि मानसिक थकान कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह मन का संकेत होता है कि अब उसे भी प्यार, आराम और सहारे की जरूरत है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बताया कि हमारे शरीर की थकान और मानसिक थकान को हमें समझना कितना जरूरी है। उन्हें समझकर हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए और इससे ही हम अपने परिवार और खुद को समय दे पाएंगे। ये बातें निरंतर आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना मनीषा एक कहानी के माध्यम से कि किस तरीके से मानसिक थकान को पहचानना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, मानसिक थकान आज के समय की ऐसी सच्चाई बन चुकी है कि जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते।
1: जी हाँ।
0: बाहर से सामान्य दिखने वाले व्यक्ति भी अंदर ही अंदर चिंता, दबाव और भावनात्मक बोझ से टूटे हुआ महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जरूरी है कि हम केवल लोगों के काम या जिम्मेदारियों को न देखें, बल्कि उनके मन की स्थिति को भी समझने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में लगातार आगे बढ़ने की दौड़ में इंसान अक्सर खुद को पीछे छोड़ देता है। वह दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखता है, लेकिन अपने मन की आवाज को अनसुना कर देता है। यही अनदेखी मनीषा धीरे धीरे रिश्तों में दूरी, व्यवहार में चिड़चिड़ापन और जीवन में निराशा पैदा करने लगती है। इसलिए मानसिक थकान को समय रहते पहचानना केवल व्यक्तिगत जरूरत नहीं है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी महसूस करती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई बार आराम को लोग आलस समझ लेते हैं। जो व्यक्ति श्रोता साथियों लगातार काम करता रहता है उसे मेहनती माना जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा आराम कर ले तो उसे आलसी समझ लिया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: यह सोच श्रोता साथियों हमें बदलने की जरूरत है। आराम करना शरीर की जरूरत है। जिस तरह भोजन और पानी की जरूरत होती है, उसी तरह हमें आराम की भी जरूरत होती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आराम करने से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है और मन को शांति मिलती है। इसके बाद ही श्रोता साथियों व्यक्ति पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ पौधों के बीच बैठना, सुबह की ताजी हवा लेना और खुली जगह में टहलना हमें मानसिक तनाव को कम करता है हमारे।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि एक स्वस्थ समाज वही होता है जहाँ लोग केवल सफलता की बात न करें, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को भी महत्व दें।
1: बिल्कुल,
0: हमें श्रोता साथियों ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ लोग अपनी परेशानी खुलकर कह सकें, बिना डर और शर्म की मदद मांग सकें और एक दूसरे का भावनात्मक सहारा बन सकें। परिवार में संवाद, अपनापन और समझ बढ़ाना आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार किसी थके हुए मन को दवा से ज्यादा जरूरत एक सच्ची बातचीत और थोड़े समय और संवेदनशील व्यवहार की होती है। अगर हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना सीख जाएं, तो कई समस्याओं को शुरुआत में ही रोका जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: आखिर में यही कहा जा सकता है मनीषा कि मानसिक रूप से मजबूत समाज बनाने के लिए जरूरत है कि हम मन की थकान को कमजोरी नहीं बल्कि देखभाल और समझ की जरूरत माने, क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है तभी इंसान उम्मीद, ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीवन जी पाता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार साथी श्रोता साथियों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सअप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है साथियों 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी है साथियों हमारे बीच पंटापुर से है, फिल्म का नाम है राज, गीत के वो है दोस्तों झुकी झुकी नज़र तेरी। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जाकिर मुलानी, सोम्या, सुभान, समीर मुलानी, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। जिला बागपत से है जगमोहन जी प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारतीय, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितुन जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापत, श्रीमती सोनम देवी जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से है बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कृतपुरी गोस्वामी, लक्ष्मणी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच पंटापुर सिटी से ही। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत के बोले साथियों मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। दोस्तों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। आर्य नगर कुक्का बिलाई से उत्तम सिंह जंगल, मोरन सिंह जंगल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगल, नंदन जंगल जी, सुकरी कला से अमित जंगल, कुशल जंगल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगल जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों मंजू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संताना एमपी से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और आपके अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच चिला भगपत से। ये फिल्म का नाम है अनारी। गीत के बोले दोस्तों, फूलों सा चेहरा तेरा। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे साथियों आसिर अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। कश्मीर से पीरजादा मिराज उद्दीन, नजमाउद्दीन जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। नेपाल नगर मध्य प्रदेश से है सुदैव शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विन और विपुल जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच रघुवीर नगर से ही। फिल्म का नाम है दिलवाले। गीत के बोले दोस्तों, कितना हसीन चेहरा। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं दिलावर खान, हसीना नाइबा, एनलिजा नाइबा और लड्डू जी। और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, बोरखेड़ा से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पावर, दिशा कुशल जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों मस्तानापुरा से अंता भगत, अरुणा भगत, चैतन्य भगत, सुलोचना भगत जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से है। फिल्म का नाम है खेल खेल में। गीत के बोले दोस्तों, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। साथियों, इस गीत के साथ चुना चार है गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रेशमी चंद्र डांगी जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, झारखंड से है मोहम्मद यांसी, अंजना, साइमा नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मीफा नवाज, बेबी चाहत जी। और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत्ता शिवाश, श्रीमती करुणा शिवाश, आयु शिवाश, विवेक शिवाश, बेबी आयु शिवाश, बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच कुरवाली से ही। फिल्म का नाम है कामचोर, गीत के बोले दोस्तों तुमसे बढ़कर। साथियों, इस गीत के साथ चुना जा रहे अनिल कुमार वर्मा, माया देवी जी, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलियस डिकेस्टो जी और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों। महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि, निजा जी, सप्रीला जी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। जोधपुर राजस्थान से रमेशचंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।
1: तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच हरिद्वार से ही। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल दोस्तों उड़नी उड़ के नाचू। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबी राही, मेरा जहां, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार जी, और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों। राजस्थान से शंभू दयालाल खटक, विमला देवी जी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार जी खटक, दीपक कुमार जी खटक, पूजा कुमारी पूजा जी खटक जी, और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिंगलानी, बबीता मिंगलानी, सुभाष योगी और बबलू डब्लू जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपकी अपनी फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच बक्सर बिहार से ही। गीत के बोले दोस्तों बोल राधा बोल। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे सरफोजीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सूरत रमेश साहू जी। डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनू मदीबा और दानिश अंसारी जी। गोला बाजार बक्सर से ही सदानंद आर्य, अभियान आर्य और परमानंद आर्य जी। सहारनपुर बक्सर से राज एडीसी अंसारी और असमा खातून अंसारी जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। सिंधु बुजकर से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुण्य वड़तकर जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों। नेहरू चौक पोंडिन से डॉक्टर सूरज यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रशांत यादव, सोनल यादव, बीबी सिया यादव जी। जलाना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओमनाथ यादव, सुभाष यादव, चंद्र यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव जी। और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों। कुम्हार गली कोलगांव से ही पांडु चंदन, उष्मा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुमार जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राज, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केसू रिधान खुराना जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में बहुत अच्छा चल रहा है सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना के साथ में, और अब आप इसे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है कालीगांव सफाराबाद से। फिल्म का नाम है सोनी महिवाल, गीत के बोल हैं रब मुझे माफ करे। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है अनवर जी और आशा भोसले जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, संचित वयाल जी, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख जी। इसी बीच हमारे साथी और भी हैं जो इसी गीत को पसंद करते हैं। सुरेश चुरसिया, शरद चुरसिया, फरुखाबाद यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं ये। और भी श्रोता साथी हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। नाम बता दो दोस्तों, पटेल नगर मोहलत से हैं रमेश कुमार जजोरिया, गितरनी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया जी। नवाशहर से हैं सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु, रितेश जी, शिक्षा साधु और प्रतीक्षा साधु, मेक्स जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। नाम बताना चाहूंगी दोस्तों आप सभी को जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, इस गीत को सुनना चाह रहे हैं धनोरा विटाली, तहसील नादुरा से, बुलढाणा महाराष्ट्र से, भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल जी, प्रेम श्रेया, श्रुति जी। अवरपुर से है छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फैजान शेख, फरुख शेख, वसीम, अफसाना, इरफान, जन्नत शेख, फरहान शेख, अब्दुल्ला लोहेवाला और साजिदा शेख जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल है सोनी महिवाल, सोनी मेरी सोनी।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की। और अगली फरमाइश हमारे बीच आई खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है दोस्तों ताजमहल। गीत के बोल हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कुल मल्होत्रा, नानक कुल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका डुग्गू सिक्का, भाविका सिक्का जी। और भी हमारे दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखेलाल वर्मा जी। सदर बाजार मारवाड़ बिलड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी, बीर शहर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बादल, गीत के बोल हैं जुगनी जुगनी। फरमाइशकर्ता इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, रामनिवास अग्रवाल जी, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टोल, पीपी कुलथे जी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा जी, दादरी गेट भिमानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं रुपेश सिंह, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जुगनी जुगनी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से आया है श्रोता साथियों। फिल्म का नाम है जीना नहीं, गीत के बोल हैं कह दो कि तुम मेरी हो वरना। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मुकेश कश्यप, सुनो सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ रहे हैं, गंज उडवारा से हैं शमशल कंवर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त श्रोता साथी जुड़ रहे हैं पत्रोट से, विजय अंबाड़कर, सुनीता, अक्षय, राधिका, ऋषिकेश अंबाड़कर जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल हैं कह दो कि तुम मेरी हो वरना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है दोस्तों पिपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं दिल ने ये कहा है दिल से। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में पिपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा जी इसी बीच जुड़ रहे हैं। बीर शहर से हैं विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे। खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे जी। दोस्तों, मॉडल टाउन करनाल से हैं सुदन उत्तन, संदीप उगलान, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईश्वर शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा गोदरा, सुनीता शर्मा, सुनीता जैन, सुनीता दिलो, हरिपाल कौर, मीनाक्षी जी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नाशिश शेख, नाजन आशीष, शाहिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। दोस्तों, और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, अजित कसाना, माया देवी, ऋतिकादित्य कसाना जी ये लदावली से हैं। इसी बीच श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्केत दले, जीविका दले, सानिका दले। पुना वाले पुड़े से अजय सोनवाने, करिश्मा अविका, शायशा सोनवाने, विशाखा मंगलकर जी। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कटवासरा, सचिन कटवासरा, सतीश योगेश युद्धव कटवासरा जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं दिल ने ये कहा है दिल से। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है, आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, नरवेल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है बाजीगर, गीत के बोल हैं बाजीगर ओ बाजीगर। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं पीएस नवाड़कर, निमा नवाड़कर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरकर जी। जुड़ना चाह रहे हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, मोहम्मद एफ अंसारी, मोहम्मद आसिन अंसारी, केफ अंसारी जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर जी, विम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ कुणाने। लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रेमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर। चौकुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्धवासी, निकट प्रेमनावासी, शिनावाज बरासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरसान, अब्बा नवासी। धनोरी तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू जी। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, हीरामन शिंदे, प्रेम प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने जी। उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेखशमा परवीन, सामा फारूक, सरफराज से गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं बाजीगर ओ बाजीगर।

श्रोता साथियों, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है, मैं आपको बताना चाहूँगी, डाबकी रोड अकोला से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, गब्बर इस पैक। गीत के बोल हैं, तेरी मेरी कहानी। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, आवर और अर्पिता जी। गंजटवारा से श्रोता साथी हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, एयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही। इस बीच जुड़ रहे हैं और भी दोस्त, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। कबीरधाम छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, कुमारी इंद्राणी माया साहू। बागपत से अब्दुल सतार अब्बासी, अब्दुल खतार अब्बासी। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फलमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। वसीम महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, प्रदेश सुरोशे, मायरा निधि सुरोशे जी। दोस्तों, जरूर बड़ो महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानिरे जी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, गव्या मल्होत्रा, जयपाल यादव जी। बरेली करेली से हैं आरिफ हुसैन अंसारी, अमीर अंसारी, नसीन शर्मा अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। फजल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, जीवन बुक जी। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरसीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत सोनू, पप्पी भाटिया जी। दोस्तों, दिल्ली से जुड़ना चाह रहे रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, रिहान अंसारी। आठ भिलाई से अनुश्री प्रदीप, राशि प्रदीप, प्रमिला प्रदीप। रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं जानवी डोमिन, पिंकी और प्रभा डोमिन। लोहारा से फर्जी हरिशंकर बेलदार, प्रभा फर्जू रानी रायगढ़ से हैं, उमाराज जगदीश उमा जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी हमारे दोस्त इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं, आपको नाम बता दो श्रोता साथियों, बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानो, बब्बन मुन्हो, काना ठाकुर, हरिप्रिया जी। पुन्ना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अनुराग चेतन, सुलोचना भगत। इसी बीच श्रोता साथी हैं जो सुनना चाह रहे हैं इस गीत को, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन शाहू, हेमंत नामदेव जी और धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं श्रोता साथियों, बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दिनेश तिवारी, सावन नाइक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी जी। और भी दोस्त इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता हांगोड़े, प्रियाली हांगोड़े और पार्थ जी और हांगोड़े परिवार के सभी सदस्यगण। कासगंज से हम जायद अली सैफी, आबाद खान, जोहान सैफी, लिब्बा मलिक जी। छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तेरी मेरी कहानी। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम में एक नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे? तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बोल, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी तो किस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
2: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
1: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
2: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
1: ये हुई ना बात गोरी।
3: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है, फोन हमारा साथी भी है और सहारा भी है पर इंसान से प्यारा नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर छोटे बड़े काम में फोन हमारा साथी बन गया है। ये हमें दुनिया से जोड़ता है, जानकारी देता है, मनोरंजन करवाता है और कई बार कठिन परिस्थितियों में सहारा भी बनता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोताओं, इस सुविधा और उपयोगिता के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या फोन इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? क्या हम अपने रिश्तों और भावनाओं को पीछे छोड़कर इस छोटे से यंत्र के गुलाम बनते जा रहे हैं?
0: बिल्कुल,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही सब बातें करने वाले हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप कहीं जाइएगा नहीं और बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि बात कर रहे हैं साथियों, फोन हमारा साथी और सहारा भी है, लेकिन इंसान से प्यारा नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने बताया था जागृति जी हमारे युवा साथियों को गीत से पहले, कि आज का समय ऐसा है जहां हमारी सुबह फोन से शुरू होती है और रात भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस चीज को हमने अपना सहारा बना लिया है, कहीं वो हमारी असली दुनिया से हमें दूर तो नहीं कर रहा? आज हम इसी सच्चाई को समझने वाले हैं दोस्तों, साथ ही आपको ये भी महसूस करवाएंगे कि किस प्रकार से हम फोन के आदि हो चुके हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि फोन जरूरत भी है और आदत भी। आज फोन जागृति जी सिर्फ एक साधन नहीं रह गया, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।
1: जी हाँ,
0: अलार्म भी फोन में, पढ़ाई भी फोन में, दोस्ती भी फोन में और मनोरंजन भी फोन में ही होती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सवाल ये है कि क्या हम फोन चला रहे हैं या फोन हमें चला रहा है? हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे हमारी जरूरत से ज्यादा आदत बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल कशिश, फोन निसंदेह हमारा एक अच्छा साथी है। ये हमें दूर बैठे अपनों से जोड़ता है। वीडियो कॉल के माध्यम से है हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने परिवार और दोस्तों से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें नई नई जानकारियाँ देता है, पढ़ाई में मदद करता है और कई बार मुश्किल समय में मार्गदर्शन भी करता है। आपातकालीन स्थितियों में फोन जीवन रक्षक भी साबित होता है। इस तरह देखा जाए तो फोन हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन समस्या तब शुरू होती है कशिश, जब ये साथी धीरे धीरे आसक्ति बन जाता है। आजकल लोग अपने आसपास बैठे लोगों से ज्यादा अपने फोन में व्यस्त रहते हैं।
0: जी जी।
1: परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने के बजाय लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। दोस्ती अब दिल से नहीं बल्कि चैट और लाइक्स तक सीमित हो गई है।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे हम असली रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं और एक आभासी दुनिया में खोते जा रहे हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि हम हजारों लोगों से जुड़े हैं आज सोशल मीडिया पर, लेकिन जब दिल भारी होता है तो बात करने के लिए कोई नहीं मिलता।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि दोस्तों ऑनलाइन रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन साथ में आने वाले रिश्ते कोई नहीं। एक सच्चा दोस्त, एक परिवार का सदस्य, उनकी जगह श्रोता साथियों कोई स्क्रीन कभी नहीं ले सकती। देखते हैं कि जब हम लगातार फोन का यूज करते हैं तो इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि लगातार फोन का इस्तेमाल हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है, ये हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि ध्यान की कमी हो रही है, नींद की समस्याएं युवा साथियों में बढ़ रही है, साथ ही हमारे जो युवा साथी हैं जागृति जी, वो अकेलेपन और चिड़चिड़ापन का भी शिकार हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया की तुलना श्रोता साथियों हमें अंदर से कमजोर बना रही है। हम दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर अपने रियल लाइफ से दुखी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों मानव जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। माता पिता का स्नेह हो गया, दोस्तों की हंसी मजाक हो गई, भाई बहन का प्यार हो गया,
0: जी जी,
1: ये सब हमारी भावनात्मक जरूरतें हैं जिन्हें कोई भी तकनीक पूरी नहीं कर सकती।
0: बिल्कुल,
1: फोन केवल एक माध्यम है, ये भावनाओं का स्थान नहीं ले सकता। एक गले लगाने की गर्माहट, एक सच्ची मुस्कान या किसी का हाथ थाम लेना, इन अनुभवों को कोई स्क्रीन कभी नहीं देख सकती। आज के समय में कई लोग फोन के इतने आदि हो चुके हैं कशिश, कि वे अपने परिवार के साथ समय बिताने में भी रुचि नहीं लेते।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं, माता पिता भी बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय फोन में व्यस्त रहते हैं।
0: जी हाँ।
1: ये दूरी धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर रही है। श्रोताओं, फोन का अत्यधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। लगातार हम देखते हैं कशिश की स्क्रीन देखने से आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: नींद में बाधा आ जाती है, तनाव बढ़ता है, वहीं सामाजिक दूरी के कारण व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे दूसरों के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, हम देखते हैं जागृति जी कि पहले लोग एक साथ बैठकर बातें किया करते थे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज सब साथ बैठकर भी फोन में ही खोए रहते हैं। और वर्तमान में तो हम ये चीज देख ही रहे हैं दोस्तों, कि जब माँ हमें बुलाती है तो सुनाई नहीं देता।
1: जी हाँ।
0: और पापा जब कुछ पूछते हैं तो ध्यान ही नहीं जाता कि पापा कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इसके कारण रिश्तों में दूरी बढ़ रही है और हमें एहसास भी नहीं हो रहा।
1: बिल्कुल,
0: देखते हैं कि युवा साथी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जैसे कि वे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, समय की बर्बादी हो रही है और लक्ष्य से भी भटकाव देखा जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं जागृति जी कि फोन हमें सुविधा जरूर देता है, लेकिन अगर नियंत्रण न हो तो ये हमारी क्षमता को भी कम कर सकता है। कह सकते हैं दोस्तों कि समाधान ही सफलता की कुंजी है ऐसे में, क्योंकि फोन छोड़ना समाधान नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हम नो फोन टाइम तय कर सकते हैं साथियों, जिसमें हम कुछ ही समय के लिए या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपना फोन साइड में रखेंगे। सोने से पहले फोन दूर रखें श्रोता साथियों, फोन को छोड़कर परिवार के साथ समय बिताएं और दोस्तों से मिलकर भी आप बात करें।
1: जी हाँ,
0: साथ ही हमारे युवा साथी ऐसा भी कर सकते हैं कि वे अपनी शौक को अपना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मोबाइल के कारण हमारे युवा साथी अपने रुचियों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कह सकते हैं कि गाना पसंद है तो आप उसमें रुचि लें, अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसलिए फोन की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी असल दुनिया को पहचाने साथियों।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फोन के बारे में बात कर रहे हैं, जान पा रहे हैं कि फोन हमारा साथी भी है और सहारा भी है, लेकिन इंसानों से प्यारा नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल
1: ये बात है, ऐसे ही हमारे युवा साथियों के साथ बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातचीत का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी ही था गीत से पहले।
1: जी जी,
0: हमारी बातचीत चल रही थी आपके साथ कि फोन हमारा साथी भी है, सहारा भी है, पर इंसानों से ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि फोन का उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। कशिश, हमें समझना बहुत जरूरी है कि फोन हमारा सेवक है, मालिक नहीं। हमें इसका उपयोग सीमित और संतुलित तरीके से करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: हमें ये याद रखना होगा कि असली खुशी और संतोष हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से मिलता है, न कि फोन के स्क्रीन से।
1: जी जी,
0: हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। जब हम परिवार के साथ हों तो फोन को एक तरफ रखकर उनसे बातचीत करनी होगी। दोस्तों के साथ मिलने पर फोन के बजाय एक दूसरों की बातों पर ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि तकनीक का सही उपयोग कैसे किया जाए और असली रिश्तों का क्या महत्व है।
1: जी जी,
0: फोन का सही उपयोग हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसका गलत उपयोग हमें अकेला और कमजोर बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जरूरी है श्रोताओं कि हम तकनीक के गुलाम न बने बल्कि उसे अपने जीवन का एक सहायक उपकरण भी बनाए रखें।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम दोस्तों से बात कर ही रहे हैं कि फोन हमारा साथी और सहारा जरूर बन सकता है लेकिन इंसानों से प्यारा नहीं है, तो ऐसे में हमारी युवा साथी सोच रहे होंगे कि हम ये विषय जो है हमारा उसे बार बार ऐसा क्यों बता रहे हैं कि ये फोन जो है वो इंसानों से प्यारा क्यों नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि जो इंसान होता है वो आपकी आंखों में देखकर आपकी बात समझ जाता है, बिना कहे आपका दर्द महसूस कर लेता है और आपको गले लगाकर सुकून दे देता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन दोस्तों फोन ये सब नहीं कर सकता। भावनाएं, प्यार, अपनापन, ये सब हमें इंसानों में ही मिलेगा साथियों। कह सकते हैं कि फोन हमारा साथी है, हमारा सहारा भी है, लेकिन इंसान से प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए रिश्तों को समय दे साथियों, अपनों को महत्व दे और जिंदगी को स्क्रीन से बाहर भेजिए। याद रखिए कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन खूबसूरत सिर्फ इंसान ही बनाते हैं।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं बस इतना ही कहना है कि फोन हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा जरूर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी नहीं है, ये हमारा साथी है और सहारा हो सकता है लेकिन इंसान से ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता।
1: जी जी,
0: असली रिश्तों की गर्माहट, अपनापन और सच्चा प्यार किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए हम सभी अपने फोन का उपयोग समझदारी से करें लेकिन अपने रिश्तों को कभी भी इसके कारण कमजोर नहीं होने दें, क्योंकि कहा गया है श्रोता साथियों, तकनीक को अपनाएंगे पर इंसानियत को नहीं भूलेंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट आज भी इंसानों से ही मिलेगी।
0: जी हाँ,
1: फोन हमारा साथी सहारा हो सकता है पर ये कभी उस अपने की जगह नहीं ले सकता साथियों जो बिना कहे हमारी भावनाओं को समझ जाए। इसलिए फोन को जरूरत तक सीमित रखें, अपनों का साथ हमेशा बनाए रखें श्रोता साथियों, और अपनों के साथ समय भी बिताएं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि असली दुनिया से जुड़कर ही हम अपने असल जीवन को महसूस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए साथियों कि स्क्रीन की रोशनी से नहीं रिश्तों की गर्माहट से जिंदगी चमकती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि फोन हमारी जिंदगी को आसान बनाने का साधन है, न कि उसे नियंत्रित करने वाला मालिक। ये हमें सहारा दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो अपनापन, वो सच्ची खुशी और वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं दे सकता।
1: बिल्कुल,
0: जो एक इंसान हमें दे सकता है। अगर हम आज नहीं संभले तो कल हमारे हाथ में फोन तो होगा लेकिन साथ में कोई नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोताओं जरूरी है कि हम समय रहते समझ जाए रिश्ते स्क्रीन पर नहीं दिलों में बसते हैं। जब हम अपने अपनों के साथ बैठकर हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को महसूस करते हैं,
1: जी हाँ,
0: तभी जीवन की असली खुशियाँ हमें मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोताओं फोन जरूरी है पर अपने उससे भी ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से फोन को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।

0: श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, हमारा विशेष बाल कार्यक्रम जहां हम बच्चों के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों को बड़ी सीख में बदलते हैं। आज का विषय है साथियों, गर्मियों की छुट्टियां और नए नए कौशल सीखना। गर्मियों की छुट्टियां आते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। कोई कहता है अब बस खेलेंगे, कोई कहता है अब बस मोबाइल चलाएंगे और कोई सोचता है साथियों बस आराम करेंगे। लेकिन क्या ये छुट्टियां सिर्फ समय बिताने के लिए होती हैं? या यह समय हमें खुद को बेहतर बनाने का एक सुनहरा मौका भी देता है? सोचिए साथियों, अगर यही छुट्टियां हम कुछ नया सीखने में लगाएं, जैसे कि चित्रकला, सिलाई, कहानी लिखना, खेल कूद करना या घर के छोटे छोटे काम, तो क्या हमारी छुट्टियां और भी खास नहीं बन जाएंगी? जी हाँ श्रोता साथियों, आज की कहानी है दो बच्चियों की जिनका नाम है आराध्या और नेहा। एक है साथियों जो छुट्टियों को सिर्फ आराम समझती है और दूसरी है जो इस समय को अपने सपनों की दिशा में इस्तेमाल करना चाहती है। इन दोनों की बातचीत हमें यह समझाएगी कि कैसे बच्चे छुट्टियों में प्रेरित रह सकते हैं। आगे भी जानेंगे श्रोता साथियों इस विषय पर। अभी मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही दिया है कि आज हमारी कहानी है गर्मी की छुट्टियां और नए नए कौशल सीखना। तो आइए साथियों सुनते हैं इस रेडियो नाटक को। आप सभी बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: अरे आराध्या, आखिर छुट्टियां आ ही गई। अब मैं सुबह देर तक सोऊंगी, दिन भर मोबाइल चलाऊंगी और कोई काम नहीं करने वाली। अब तो बस मजे ही मजे हैं।
2: हाँ नेहा, और मजे करना तो जरूरी भी है, लेकिन अगर हम पूरा समय सिर्फ यूं ही निकाल देंगे तो छुट्टियां तो खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद हमें लगेगा कि हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है।
1: अरे यार, साल भर तो पढ़ाई करते रहते हैं, अब छुट्टियों में भी सीखना है क्यों?
2: नेहा, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता है। छुट्टियां जो होती है वो हमें वो सिखाती है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता है।
1: तो तुम क्या करोगी छुट्टियों में? क्या फिर से पढ़ाई ही करोगी क्या?
2: नहीं, पढ़ाई तो नहीं, लेकिन मैं कुछ नया सीखूंगी, जैसे कि ड्राइंग, कहानी लिखना, और मैंने तो सोचा है कि मैं तो मम्मी के साथ खाना बनाना भी सीखूंगी, थोड़ा खेलकूद भी करूंगी। इससे क्या होगा, मेरा समय भी अच्छे से जाएगा और मैं कुछ नया भी सीख पाऊंगी।
1: इतना सब करने से थकान नहीं होगी क्या तुम्हें?
2: नहीं, क्योंकि इसमें तो मजा भी है और सीख भी, और मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
1: मुझे तो मोबाइल में ही मजा आता है, गेम खेलो, वीडियो देखो, समय का पता ही नहीं चलता।
2: समय का पता नहीं चलता, यही तो समस्या है नेहा। जब हम मोबाइल में खो जाते हैं तो असली जिंदगी के अनुभव को हम खो देते हैं।
1: लेकिन मैं क्या करूं, आदत ही पड़ गई है मेरी तो।
2: आदत बदल सकती है, बस शुरुआत करनी पड़ती है। चल आज हम एक नया काम शुरू करते हैं, तुम मेरे साथ ड्राइंग करना, फिर हम बाहर खेलेंगे और शाम को कुछ नया सीखेंगे, क्या बोलती हो?
1: मुझे ड्राइंग वाइंग नहीं आती।
2: अरे नेहा, कोई भी चीज शुरू में नहीं आती है, सीखने से ही आती है।
1: अच्छा, ऐसा है क्या? चलो करती हूँ मैं ट्राई। आराध्या, आज तो मुझे बहुत मजा आया, मैंने ड्राइंग भी की और तुम्हारे साथ खेल भी खेला और मोबाइल कम चलाया है मैंने।
2: देखा, मैंने कहा था ना, जब हम कुछ नया करते हैं ना तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमें खुशी भी मिलती है। क्या तुम्हें खुशी मिली?
1: अब मुझे लग रहा है कि मैं भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ। अब मैं छुट्टियों को सिर्फ आराम का समय नहीं मानूंगी, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगी और अपने समय का सही उपयोग भी करूंगी।
2: बिल्कुल, और यही तो हमारी छुट्टियों का सदुपयोग हुआ, जब हम खुश भी रहेंगे और कुछ सीखेंगे भी, और यही हमारी छुट्टियों की असली जीत है।
1: अरे आराध्या, मैंने आज मम्मी की मदद से खाना बनाना सीखा। पहले मुझे लगता था कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अब समझ में आया कि इसमें भी बहुत मजा है और कितनी सारी चीजें मुझे सीखने को भी मिली है।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी

0: आत्मविश्वास बढ़ता है और हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं।
1: हाँ आराध्या, अब मैं अपनी छोटी बहन को भी सिखाऊंगी कि मोबाइल मत चलाया कर, कुछ नया सीख। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा, क्योंकि जब हम खुद सीखते हैं तभी हम दूसरों को सिखा पाते हैं और वहाँ से ही असली बदलाव हमारे अंदर आता है।
1: हाँ आराध्या, अब मुझे समझ भी आ गया है कि छुट्टियाँ सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका होती है। अगर हम इस समय का सही उपयोग करेंगे तो हम अपने सपनों के और करीब पहुँच सकते हैं।
0: हाँ, और यही तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि जब हम अपने समय की कद्र करते हैं ना, तो हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं।
1: अब मेरी भी छुट्टियाँ सिर्फ मस्ती नहीं, सीख और आत्मविश्वास से भरी हुई होगी।
0: हाँ, और यही असली सफलता है।
1: छुट्टियाँ आई छुट्टियाँ आई, खुशियाँ लाई, सीखो कुछ नया, बढ़ो आगे भाई, खेलो कूदो, हुनर दिखाओ और अपना सपना सच बनाओ।
2: साथियों, आपने सुना एक छोटी से सोच ने कैसे एक बच्चे की पूरी छुट्टियां बदल दी। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं होती, बल्कि यह समय होता है खुद को पहचानने का, नई चीजें सीखने का और अपने सपनों की दिशा को तय करने का। जब बच्चे इस समय का सही उपयोग करते हैं तो वे सिर्फ खुश नहीं रहते, वे आगे भी बढ़ते हैं। इसलिए साथियों, अपने बच्चों से कहिए, मोबाइल कम, सीखना ज्यादा, आराम के साथ प्रयास भी करने हैं और हर दिन कुछ नया सीखने का उत्साह रखना है। तो साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे इस विषय पर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवाना चाहूंगी।

तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में जो भी हमारी बातें रही आपसे और गीत संगीत रहे, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम से जाने की। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

ने भविष्य तक की जरूरत को है। आपने सब जाना सो कि पानी जो है इन्हें वगर आप जीवन है ये संभव नहीं। खेतर हरियाली पशु नु स्वास्थ्य घर जरूरत है ई ने गांव की समृद्धि इतनी चीजें हैं ये पानी मात्र

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे स्तु देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बात रहने वाली है, बैंक में नॉमिनी क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि आज के समय में बैंक केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं रह गया है बल्कि हमारे जीवन की आर्थिक सुरक्षा का आधार बन चुका है। हर व्यक्ति अपने भविष्य, परिवार और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक में बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, बीमा और अन्य योजनाओं में निवेश करता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अक्सर लोग एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं और वो है नॉमिनी बनाना।
0: बिल्कुल,
1: बहुत से लोग बैंक खाता तो खोल लेते हैं पर नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते। बाद में यही छोटी सी लापरवाही परिवार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए श्रोताओं बैंक में नॉमिनी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, लेकिन अभी सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और बातचीत भी रही थी हमारी कि आज हम बात करने वाले हैं बैंक में नॉमिनी क्यों जरूरी है। तो अंजलि, कहा गया है कि बैंक खाते की ये कहानी सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत जरूरी है नॉमिनी।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि आज के समय में बैंक केवल पैसा जमा करने की जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आर्थिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। लोगों की मेहनत की कमाई, बचत, फिक्स डिपॉजिट, बीमा, पेंशन और कई सारी आर्थिक योजनाएं बैंक से जुड़ी होती हैं। लेकिन अक्सर लोग बैंक खाता खोलते समय एक छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और वह है नॉमिनी बनाना। श्रोता साथियों, कई लोग इसे केवल औपचारिकता समझते हैं, जबकि वास्तव में यह परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नॉमिनी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे खाता धारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते या जमा राशि पर अधिकार मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: यह व्यक्ति परिवार का सदस्य, पति पत्नी, माता पिता, बच्चा या कोई भी भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बैंक में नॉमिनी जोड़ना भविष्य की अनिश्चितताओं से परिवार की सुरक्षा रखने का एक सरल लेकिन बहुत ही जरूरी तरीका होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे खाता धारक अपनी मृत्यु के बाद बैंक खाते या जमा राशि का अधिकार प्राप्त करने के लिए नामित करता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि किसी खाताधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो बैंक में जमा धनराशि नॉमिनी को सौंप दी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे परिवार को आर्थिक संकट के समय सहायता मिलती है और कानूनी प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। यदि नॉमिनी नहीं हो तो परिवार को बैंक से पैसा निकालने में कई कानूनी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
1: जी हाँ,
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिश्चितताएं बढ़ गई है श्रोता। कोई नहीं जानता कि कब कौन सी परिस्थिति सामने आ जाए। ऐसे में अंजलि, यदि किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक दुनिया छोड़ दे और उसके बैंक खाते में नॉमिनी न हो तो परिवार आर्थिक परेशानी में फंस सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, बैंक की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, परिवार को पैसों के लिए कई कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए नॉमिनी परिवार की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवार वालों को तो वैसे ही पैसा मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। यदि बैंक खाते में नॉमिनी नहीं होता है तो खाता धारक की मृत्यु के बाद परिवार को कई कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हम देखते हैं कि परिवार को बैंक में कई दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, कई बार कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है। इसमें समय और पैसा दोनों लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि घर का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति अचानक नहीं रहता है तो जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि परिवार को तुरंत पैसे की जरूरत होती है और नॉमिनी नहीं होने पर बैंक राशि निकालने में देरी होती है, जिससे परिवार संकट में पड़ सकता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, कई बार परिवार के सदस्यों में इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि पैसे पर किसका अधिकार है। नॉमिनी होने से ऐसी स्थितियां काफी हद तक कम हो जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: गांव और छोटे शहरों में कई महिलाओं और बुजुर्गों को बैंक प्रक्रिया की ज्यादा जानकारी नहीं होती है और नॉमिनी न होने पर उन्हें बार बार बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि नॉमिनी केवल बैंक खाते में नहीं बल्कि फिक्स डिपॉजिट, लॉकर, बीमा पॉलिसी, पेंशन योजनाओं में भी जरूरी है। इसे सुनिश्चित होता है कि जमा की गई संपत्ति सही व्यक्ति तक पहुंची। कई बार परिवार के सदस्यों में विवाद भी हो जाता है कि पैसा किसे मिलेगा, लेकिन नॉमिनी पहले से तय हो तो ऐसे विवाद कम हो जाते हैं और पारिवारिक संबंध भी सुरक्षित रहते हैं।
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, आपसे बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से लोग नॉमिनी के महत्व को ठीक से नहीं समझते हैं। कई बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे लोग बैंक में केवल खाता खुलवाने पर ध्यान देते हैं अंजलि, और नॉमिनी की प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बाद में उनके परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए बैंक कर्मचारी और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। स्कूलों, ग्राम सभा और सामाजिक कार्यक्रमों में वित्तीय जागरूकता के तहत नॉमिनी के महत्व को समझाया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि बैंक में नॉमिनी होना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से यह जो चीज है वो हमारे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम

0: जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि नॉमिनी न होने पर क्या समस्याएं होती हैं और किस तरीके से इसके फायदे हैं, यही बात करें कि इससे जोड़ने की क्या प्रक्रिया है। तो श्रोता साथियों, नॉमिनी जोड़ना बहुत आसान होता है। बैंक खाता खोलते समय एक फॉर्म भरना होता है जिसमें नॉमिनी का नाम, उम्र और संबंध लिखना पड़ता है। यदि पहले नॉमिनी नहीं जोड़ा तो बाद में भी बैंक जाकर यह सुविधा ली जा सकती है। आज कई बैंक मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी नॉमिनी अपडेट करने की सुविधा दे रहे हैं। जागृति जी, हम देखते हैं कि आज भी कई लोग नॉमिनी का महत्व नहीं समझते। कुछ लोग सोचते हैं कि यह केवल बुजुर्गों के लिए जरूरी है, बल्कि सच्चाई यह है कि हर उम्र के व्यक्ति को अपने बैंक खाते में नॉमिनी जरूर जोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लोग यह काम टालते रहते हैं और बाद में परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्रोता साथियों, वित्तीय जिम्मेदारी केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उसकी सुरक्षा और सही व्यवस्था भी जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि नॉमिनी केवल कानूनी प्रक्रिया को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये परिवार के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति अपने खाते में नॉमिनी जोड़ता है तो अपने परिवार की सुरक्षा और सुविधा दोनों के बारे में सोचता है।
0: बिल्कुल,
1: ये एक दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। एक जिम्मेदार नागरिक वही है श्रोताओं, जो अपने साथ साथ अपने परिवार के भविष्य की भी चिंता करे।
0: जी,
1: कहा गया अंजलि कि जिम्मेदार वही इंसान जो परिवार का ध्यान रखता है। आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग का दौर है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन निवेश तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी,
1: ऐसे समय में नॉमिनी की भूमिका और भी अधिक ज्यादा जरूरी हो गई है। यदि किसी व्यक्ति की डिजिटल जानकारी परिवार को न पता हो तो बैंक खाते तक पहुंचना कठिन हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन नॉमिनी होने से बैंक कानूनी रूप से राशि प्रदान कर देता है और परिवार को आर्थिक सहारा मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं अंजलि कि लोग सोचते हैं कि परिवार वाले तो अपने आप पैसा प्राप्त कर लेंगे, फिर नॉमिनी की क्या जरूरत है।
0: जी,
1: लेकिन वास्तविकता ये है।

0: बताता हूँ कि बिना नॉमिनी के बैंक किसी को सीधे पैसा नहीं देता। इसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें समय और धन दोनों खर्च होते हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले से ही नॉमिनी बना दिया जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ जोड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पैसा, संपत्ति, बचत और सुविधाएं, लेकिन यदि इन सब की सही व्यवस्था न हो तो कई बार हमारी मेहनत से बनाई गई सुरक्षा ही परिवार के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। बैंक में नॉमिनी जोड़ना उसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल बैंक की औपचारिकता नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एक समझदारी भरा कदम है। अक्सर लोग भविष्य के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसे में समझदारी इसी में ही है श्रोता साथियों, कि हम पहले से ऐसी तैयारी रखें जिससे हमारे बाद परिवार को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। नॉमिनी की सुविधा परिवार को भरोसा देती है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी ही जमा पूंजी पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह भी जरूरी है जागृति जी कि समाज में वित्तीय जागरूकता बढ़े। गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में आज भी कई लोग बैंकिंग की छोटी लेकिन जरूरी बातों से अनजान हैं। यदि लोग नॉमिनी के महत्व को समझेंगे तो कई परिवार भविष्य की परेशानियों से बच सकेंगे।
0: बिल्कुल,
1: स्कूलों, सामुदायिक कार्यक्रमों, बैंकों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जानी चाहिए श्रोता साथियों कि आर्थिक सुरक्षा केवल कमाई से नहीं बल्कि सही योजना और जिम्मेदारी से आती है।
0: बिल्कुल,
1: और व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि छोटी छोटी सावधानियां ही भविष्य की बड़ी परेशानियों को रोकती है। इसलिए बैंक खाते, FD, बीमा और अन्य आर्थिक योजनाओं में सही नॉमिनी जोड़ना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम है। यही दूरदर्शिता एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक की पहचान बनती है।
0: बिल्कुल अंजनी, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हमें कहना चाहेंगे कि नॉमिनी बच्चे हो सकते हैं, महिला और बुजुर्ग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि परिवार का मुखिया नहीं रहे तो नॉमिनी के माध्यम से परिवार को बहुत जल्दी आर्थिक सहायता मिल सकती है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। श्रोता साथियों, आपसे कह सकते हैं कि बैंक में नॉमिनी बनाना एक छोटी सी प्रक्रिया होते हुए भी बहुत बड़ा महत्व रखती है। ये भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती है, परिवार को कानूनी परेशानियों से बचाती है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में हमारी मदद करती है।
1: जी हाँ,
0: हर व्यक्ति को अपने बैंक खाते, FD, बीमा और अन्य योजनाओं में नॉमिनी अवश्य जोड़ना चाहिए। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है श्रोताओं, बल्कि अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए कहा गया है कि धन कमाना समझदारी है, परिवार की सुरक्षा जिम्मेदारी है। नॉमिनी जोड़कर यही बताना है कि अपनों का भविष्य भी हमें ही बचाना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि बैंक में नॉमिनी क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: 9001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
0: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बुन, आपके कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रद्धा साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो हम एक नए विषय को लेकर आपसे बातचीत करते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से सेहत से जुड़ा एक बहुत ही अच्छा विषय जुड़ रहा है। साथियों, बात कर रहे हैं कि सेहत की समस्याओं के समाधान के लिए उसकी प्रक्रियाओं को पहले हमें समझना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि मनीषा, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, यह शरीर जो है वो दिन रात बिना रुके हमारे लिए काम करता रहता है। हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं और सपने भी देखते हैं, साथ ही जीवन का आनंद भी लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अंदर ही अंदर हजारों प्रक्रियाओं को लगातार संचालित कर रहा होता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन दोस्तों अक्सर हम तब तक अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि कोई बीमारी या समस्या सामने नहीं आ जाती।
0: जी हाँ,
1: देखते हैं कि सिर दर्द, थकान, कमजोरी, मोटापा, तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधित परेशानी हो या फिर नींद की कमी जैसी कई समस्याएं दोस्तों अचानक पैदा नहीं होती है।
0: जी हाँ,
1: बल्कि शरीर की प्रक्रियाओं में धीरे धीरे आने वाले असंतुलन का ये परिणाम होती है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बताया ही था कि आज हम बात करने वाले हैं सेहत की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि आज के समय में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या तेजी से बढ़ रही है। पहले जहां लोग केवल संक्रामक बीमारियों से परेशान होते थे, वहीं आज तनाव, मधुमेह, मोटापा, रक्तचाप, हृदय रोग, कुपोषण और मानसिक समस्याओं से जुड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आधुनिक जीवन शैली, गलत खान पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव इन समस्याओं के मुख्य कारण होते हैं। साथ ही कोशिश, हम देखते हैं कि अक्सर लोग बीमार होने के बाद इलाज के बारे में सोचते हैं, जबकि श्रोता साथियों सही तरीका यह है कि हम बीमारी के कारण, उनके लक्षण, समाधान की पूरी प्रक्रियाओं को समझें। जब व्यक्ति किसी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ को समझ लेता है कशिश, तब वह उसका स्थायी समाधान कर सकता है। केवल दवा खाना ही समाधान नहीं है साथियों, बल्कि सही दिनचर्या, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और स्वच्छता भी आवश्यक है। स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए हमें यह समझना होगा कि हर बीमारी का संबंध हमारे शरीर, मन और वातावरण से होता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम सही प्रक्रियाओं को अपनाएं तो न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि आज के समय में लोग जल्दी इलाज चाहते हैं, लेकिन बीमारी की जड़ को समझने का प्रयास नहीं करते।
0: बिल्कुल,
1: दवा लेना आसान होता है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि शरीर आखिर संकेत क्या दे रहा है।
0: जी हाँ,
1: यदि हम शरीर की कार्यप्रणाली को समझ ले मनीषा, तो कई बीमारियों से हम पहले ही बच सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश,
1: यही कारण है साथियों कि स्वास्थ्य के समाधान केवल दवाओं में नहीं बल्कि शरीर की प्रक्रियाओं के समझने में छिपे होते हैं।
0: जी जी,
1: हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारा शरीर एक मशीन नहीं बल्कि एक जीवित व्यवस्था है। शरीर का हर अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है। यदि पेट खराब है तो उसका असर दिमाग पर भी पड़ सकता है।
0: जी हाँ,
1: यदि तनाव बढ़ता है तो नींद प्रभावित हो सकती है, और यदि नींद खराब होती है तो पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। इसलिए साथियों, शरीर को अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में हमें समझना चाहिए।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आजकल लोग स्वाद और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। फास्ट फूड, अधिक तेल मसाले, जंक फूड और मीठे पदार्थों का अत्यधिक सेवन शरीर को नुकसान पहुंचाता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: इससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। श्रोता साथियों, इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें ताजा और पौष्टिक भोजन करना है।
1: बिल्कुल,
0: हरी सब्जियां और फल अधिक खाने हैं हमें, और साथ ही अधिक पानी पीना है। तले हुए भोजन से बचे साथियों, और समय पर भोजन करें। कशिश, हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा देता है और रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि तकनीकी के बढ़ते उपयोग ने लोगों को आलसी बना दिया है। लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर कमजोर होता है साथियों। समाधान के लिए हमें कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना है, सुबह टहलने जाएं, योग और प्राणायाम करें, खेल कूद में भाग लें। साथियों, व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ,

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हम हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है कि सेहत की समस्याओं के समाधान के लिए उसकी प्रक्रियाओं को हमें पहले समझ लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर बात करें मनीषा मानसिक स्वास्थ्य की तो देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी शरीर की प्रक्रियाओं का असर पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि आज तनाव लगभग हर आयु वर्ग की समस्या बन चुका है। विद्यार्थी पढ़ाई के दबाव में है, युवा करियर की चिंता में है, और बुजुर्ग जो है वो अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान है।
1: जी हाँ कशिश,
0: लेकिन दोस्तों तनाव केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करता है।
1: जी हाँ,
0: तनाव बढ़ने पर शरीर के कुछ हार्मोन्स अधिक बनने लगते हैं जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है, नींद खराब हो सकती है और प्रतिरोधक क्षमता इससे कमजोर हो सकती है। मनीषा, यदि व्यक्ति मानसिक प्रक्रियाओं को समझ जाए तो वह यह जान पाएगा कि हर समय चिंता करना समाधान नहीं होता बल्कि मन को शांत रखने के लिए हमें बातचीत, ध्यान, योग के साथ साथ संगीत, प्रकृति के साथ समय बिताना और सकारात्मक सोच को अपनाना भी जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भविष्य की कई समस्याओं को आमंत्रण देने जैसा है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई लोग स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं रखते। जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें सही निर्णय लेने होते हैं साथियों,
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए। श्रोता साथियों, हम जागरूकता कैसे बढ़ाएं? इसके लिए हमें स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने हैं, रेडियो और टीवी के कार्यक्रम चलाने हैं, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा दी और सोशल मीडिया पर सही जानकारी दें। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि कई बीमारियां शुरुआती चरण में पता नहीं चलती। नियमित जांच से बीमारी को समय समय पर पहचाना जा सकता है साथियों, इसीलिए साथ ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच हमें करवानी है, रक्तचाप और शुगर की जांच हमें करवानी है और बच्चे और बुजुर्ग इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेते हैं जिससे श्रोता साथियों हमें नुकसान होते हैं। कभी भी हमें श्रोता साथियों डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हमें दवाइयां लेनी है। श्रोता साथियों डॉक्टर की सलाह माने, दवाइयां समय पर ले और इलाज को अधूरा न छोड़ें।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है।
1: जी हाँ,
0: हमारा शरीर हर दिन अनेक वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है साथियों। यदि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। लेकिन वही गलत खानपान, तनाव, धूम्रपान, शराब, नींद की कमी और शारीरिक निष्क्रियता के कारण श्रोता साथियों इस शक्ति को कमजोर हम कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण आज हम कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। मनीषा, बहुत से लोग केवल बीमारी होने पर स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, जबकि सच तो ये है कि स्वस्थ रहने की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, सकारात्मक दिनचर्या और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। साथियों जब हम ये सब समझ जाते हैं कि शरीर खुद को बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है, तब हम उसकी सहायता करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं दोस्तों को कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल।
0: साथियों धन, सफलता और सुविधाएं तभी सार्थक है जब शरीर और मन स्वस्थ हो, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाइयों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है साथियों। जरूरी ये भी है कि हम अपने शरीर की कार्यप्रणाली को समझें, उसके संकेतों को पहचानें और समय रहते सही कदम उठाएं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि मनीषा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे केवल खराब होने पर ही ठीक किया जाए। ये एक जीवित व्यवस्था है जिसे निरंतर देखभाल, संतुलन और अनुशासन की जरूरत होती है। ऐसे में साथियों सही भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच, ये सभी चीजें मिलकर शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाघ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वरामर हित्ता भाई बोनो ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाइयों बोनो आप सब हमरे रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाइयों बोनो लेने हाजिर थी गयो हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान में लेने एक नया विषय ने हाथे। मनीषा बोन आज भाई बोनो थी आपड़े बातचीत विषय है कि परिवार में आपड़े देखो हो कि आपड़े घना कानी वाते माते निर्णय लो घनी वक्त जे मनक है एना ने एक बीजा जे राय है ई एक बीजा तकी इन तकी सहमत नहीं रहता तो आ समस्या केम आवे है ने समाधान ना हो उपाय थई सके इना वारा में आज आपड़े वाते करवा वारा हो
0: होवी
1: तो वाते तो आपड़े घना कानी करंगा पर मारू मन थई रह्यो है कि कार्यक्रम नी शुरुआत में पहलू गीत आपड़े भाईन बोनो ने आपड़े हमरावी दो।
0: होवे अंजलि बोन तो भाईन बोनो हमर तरेजो आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागर रेडियो 90.8 FM माते हैं।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।